0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का साधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में वे कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
3: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है, शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी.डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस्क के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे।

0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई, करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा। हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट्स लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स री पोलिंग अक्रॉस ऑल 285 पोलिंग स्टेशन एट फालता असेंबली कंस्टिट्युएंसी इन वेस्ट बंगाल ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ। Operation Sindoor reflects government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action, says Defence Minister Rajnath Singh. Another India-bound LPG tanker safely crosses Strait of Hormuz. United States to pull over 5,000 troops out of Germany. IMD forecasts heavy rainfall over some parts of northeastern and peninsular India. Central plains to witness thunderstorms and lightning today. And Madhya Pradesh pole vaulter Kuldeep Kumar breaks national record at Bhubaneswar. And now the news in detail. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. More from our correspondent.
5: The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana district in West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters, and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorized individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
4: Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning. In Tamil Nadu, a total of 10,545 counting personnel will be deployed on counting duty, supported by 4,624 micro-observers. Our correspondent reports that 234 counting observers, one for each assembly constituency, will oversee the proceedings and ensure strict adherence to extant instructions of the commission.
6: Security has been tightened due to the counting process on Monday all over the state. Each and every individual on duty at the counting center have been issued a photo ID card with QR code to ensure that there will be no misrepresentation. A security perimeter starting from 100 meters around each counting center has been established. The second entry gates of the counting premises will be secured by the state armed police. The innermost security at the entrance to the counting halls and the EVM strong rooms will be managed by the central armed police forces. In addition to the local and the state police, 65 companies of the central armed police forces have been deployed at the counting centers to further strengthen security arrangements. The state has registered 85.10% votes with 4 crore

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: और इसी म्यूजिकली योर्स पर आ चुका हूं मैं आपका हमराज। जी हाँ, हेलो हाय, आदाब और सत श्री अकाल आप लोगों के बीच। आपका हमराज RJ अभिनव ले आया हूं एक बार फिर से 107.1 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो मुंबई पर आपका पसंदीदा शो जो कि है मस्त मुंबई। मस्त मुंबई में आज दोबारा से आपको लेकर चलूंगा। कहां सेगमेंट वही जो कि आपको पता है, आपका मन पसंदीदा सेगमेंट, आपका मन पसंदीदा शो आज चल के तुझे, यानी कि आपको पता है कि हम हर बार इस एक सेगमेंट में, इस शो में किसी एक जगह की आपको यात्रा कराते हैं, लेके चलते हैं। मैं हमेशा आपको लेकर चलता हूं अपने साथ। आज कुछ विशेष दिन भी है, आज उसके बारे में ही बात करेंगे। और लेकिन आज जहां लेकर जाने वाला हूं, आप खुद गेस करिएगा कि कहां लेकर जाने वाला हूं। आज मैं आपको ऑफिस नहीं, ना 9 to 5 की लाइफ में, आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक शहर की धड़कन में, एक कहानी में, एक मोहब्बत में। और आचल के तुझे और आज ये शहर खुद आपसे बात करेगा। पेश करता हूँ ये गीत। आज वो गीत रखे जाएंगे जो इस शहर के फेमस मॉन्यूमेंट्स पर फिल्माए गए हैं, या इस शहर के अंदर फिल्माए गए हैं, या कहानी वैसी है जो वहाँ से रिलेट करती है और फिल्माई गई है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत।

जी हाँ, मैं नाम हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपका हमराज आरजे अभिनव पाराशर। जी आज का सेगमेंट आपको पता ही आ चल के तुझे, और आज ये शहर खुद आपसे अब बात करेगा। नमस्कार, मैं हूँ आगरा। हाँ, वही जिसे तुमने किताबों में पढ़ा, फिल्मों में देखा और शायद दिल में बसाया। मैं यमुना के किनारे बसा हूँ, जहाँ इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया, जिया गया है। तो शुरुआत कहीं से, जहाँ या वहीं से कहें, जहाँ हर कहानी आकर ठहर जाती है। मेरा दिल, मेरा गौरव, ताजमहल। और मैं उन गीतों को लेकर भी आया हूँ जो स्पेशली ताजमहल पे फिल्माए गए हैं। और ये आई थिंक इससे पहले भी कुछ और गीत थे, लेकिन ये ऐसा पहला गीत था, गाना था जो हम लोगों को पता है, जो कि लीडर फिल्म का था। दिलीप साहब और वैजयंती माला जी थे इस गाने में, और ताजमहल में ये फिल्माया गया था। बाकायदा शूटिंग के लिए पूरी जगह खाली करा दी गई थी और बहुत अच्छे से शूटिंग हुई थी। और आप इस गाने को आज भी लीडर मूवी में या यूट्यूब पर देख सकते हैं। शाहजहां ने बनवाया अपनी मोहब्बत मुमताज़ के लिए 22 साल, 20,000 कारीगर और एक कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होती। हर सुबह देखता हूँ जब सूरज की पहली किरण मेरे ताज पर पड़ती है, तो सफ़ेद संगमरमर रंग बदलता है जैसे प्यार बदलता है।

हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन।

बनाऊ हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपका हमराज आरजे अपना 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर चल रहा है मस्त मुंबई। और आचल के तुझे, जी हाँ आचल के तुझे कहीं लेके चलूँ एक ऐसी गगन के तले। बात कर रहे हैं आज हम लोग शहर की, आगरा की। लेकिन सबसे पहले अब मैं कुछ खासम खास न्यूज़ भी आपको देना चाहता हूँ, या इन्फॉर्मेशन कहें तो, क्योंकि आज का दिन भी खासम खास है। 3 मई 1913, जी हाँ, पहली इंडियन फीचर फिल्म, और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है और हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि पहली इंडियन फीचर फिल्म, भारतीय हिंदी जो फिल्म थी और फीचर फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र, वो थिएटरिकली रिलीज हुई थी कोरोनेशन सिनेमाटोग्राफ में, वैरायटी हॉल में, गिरगांव में, तब बॉम्बे और अब के मुंबई में, जिसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के ने, जिनका पूरा नाम है गोविंदराज भट्टीराज फाल्के। ये 40 मिनट की साइलेंट माथोलॉजिकल फिल्म थी जो इंडियन सिनेमा का बर्थ मानी जाती है, जी हाँ, राजा हरिश्चंद्र। और उसके बाद ही आई थी पहली बोलती फिल्म आलमारा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रहे हैं हम लोगों के लिए इतिहास में, हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस, पहली फुल

इंडियन फीचर फिल्म थी जिसने फाउंडेशन रखा था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर, जो कि राजा हरिश्चंद्र के ऊपर थी। और प्रोडक्शन था दादा साहब फाल्के जी का और फीचर किया था इसमें सारे के सारे मेल कास्ट को। हालांकि जो फीमेल लीड का रोल था रानी तारामती का, वो भी एक मेल एक्टर ने किया था जिनका नाम था अन्ना सालुंखे, क्योंकि तब फीमेल एक्टर्स नहीं मिलती थी या फीमेल एक्टर नहीं मिलते थे। ये एक साइलेंट मूवी थी जिसमें कोई डायलॉग नहीं था और साउंड इफेक्ट नहीं था। बात कर रहे थे हम लोग मस्त मुंबई में आ चल के तुझे मैं आगरा की। गुजार कहते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, और सच ताजमहल वही तो फुर्सत है, और जहां मोहब्बत है वहीं सत्ता भी है। इसके लिए क्या कहेगा आगरा मैं सुनाता हूं, लेकिन पहले अब आप सभी लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ गाने पेश करूंगा और लाया हूं आप सभी लोगों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारी पूरी एफएम रेनबो फैमिली की तरफ से, एफएम रेनबो की इस लिसनर फैमिली के लिए। प्रमोद जी, प्रदीप, रजनीकांत, दीपा, पंकज मोहर, विजेंद्र घाटोल, सुभाष चौहान, सभी के लिए और आप सब लोगों के लिए। इसके बाद और भी लाऊंगा, लेकिन पहले ये गीत खुद ही गेस करिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, और जिसको भी अगर आपको अपनी तरफ से डेडिकेट करना है तो ये डेडिकेट कर दीजिएगा सॉन्ग मेरी तरफ से, और मैं तो कर ही रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। आज दो और खास शख्सियत का बर्थडे है और बर्थडे रहा है 106वां, यानी कि 106 कहें तो अचला सचदेव जी का। जी हाँ, जिनको आपने कई सारी पुरानी फिल्मों में देखा होगा, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं जिन्होंने दादी का रोल किया था, और वक्त मूवी में बलराज सानी साहब के थी जिनके ऊपर पिक्चराइज किया गया बड़ा फेमस सॉन्ग, और सॉन्ग तो आपको पता ही है, ए मेरी सोहरा जबी। आज अरुणा ईरानी जी का भी बर्थडे है, 74th बर्थडे, उनको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। तो ये थी आज की बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें जो आप सब लोगों के लिए थी मेरे पास। शेर व शायरी की भी बातें करूंगा क्योंकि आज बातें तो बहुत सारी करनी है। जी हाँ, और इसके अलावा कुछ और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बर्थडे हैं, जैसे कि विजय देवरकोंडा, अजिंक्य देव और अश्नूर कौर, उन सबको भी अपनी तरफ से हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, यानी कि विशेष देते हैं। और जहां मोहब्बत वहीं सत्ता भी है। मैंने बादशाहों को आते जाते देखा है, आगरा किला, लाल पत्थरों का वो शहर जहां अकबर ने राज किया, जहां से भारत को चलाया गया, और हां यहीं से शाहजहां ने अपने आखिरी दिनों में ताज को दूर से देखा। कैद में भी मोहब्बत आजाद थी। और आगरा सिर्फ ताज नहीं है, इसके बाद कुछ और भी बातें हैं जो जरूर बताऊंगा, और पहले पेश करता हूं अब मेरे ब्रदर की दुल्हन के कई सारे गाने जो कि आगरा फोर्ट में भी फिल्माई गई थी, आगरा के कई हिस्सों में फिल्माया गया था उसका सॉन्ग, यानी कि पिक्चराइज किए गए थे, और बड़ी प्यारी सी मूवी थी। और साथ साथ हैं बैक टू बैक कुछ सॉन्ग, पहले मधुबाला।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

और आपको ये पता नहीं होगा लेकिन आगरा शहर ने काफ़ी सारे शायर भी दिए, जैसे कि मीर तकी मीर, गालिब और नज़ीर अकबर आबादी, सब ने अपने अपने हिसाब से नाम भी वैसे जोड़ के रखे थे। मीर तकी मीर जिनका जन्म आगरा में हुआ था और तब इसे अकबर आबाद कहते थे, लेकिन उनके कलाम में सीधे तौर पर आगरा की बजाय उनके दर्द प्रेम और रोमानियत यानी कि रोमांटिसिज्म की झलक मिलती है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। नाजुकी उस लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है।

बताऊँगा गालिब की। जी हाँ, दिल्ली की वो गलियाँ जहाँ गालिब की शायरी गूंजती है, हालांकि ये दिल्ली के लिए है, लेकिन उनके शुरुआती साल आगरा के काला महल में बीते थे, जिसे वो अक्सर याद भी करते थे। कहते थे भाई कि अब दिल्ली की गलियाँ छोड़कर वापस आगरा कैसे जाएँ, और आगरा में तो रहे हैं। गालिब ने कहा था कि आगरा एक ऐसा शहर है जहाँ मोहब्बत हवा में है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, यूं ही तो हम नहीं मरते हैं रश के चमन पे दम निकले। और ये बात है 27 दिसंबर 1797 को मोहब्बत की नगरी आगरा के काला महल में पैदा हुए मिर्ज़ा गालिब की। आगरा की यादें हमेशा उनकी शायरी में दिखाई देती रहीं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग आंचल के तुझे मैं किसकी, अभी के शहर आगरा की। मैं पूरा इतिहास हूँ, अतमाउद्दौला जिसे लोग बेबी ताज कहते हैं, जामा मस्जिद मेरी रूह की आवाज, और थोड़ी दूर फतेहपुर सीकरी अकबर का सपना, सिटी ऑफ विक्ट्री। मैं सिर्फ इमारतें नहीं, वक्त का संग्रहालय हूँ। अगर लोगों को लग रहा है कि स्पेशली सिर्फ एक ताजमहल है, तो यहाँ पर ताजमहल और लाल किले के अलावा आगरा शहर में और भी काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, लगभग 50 से ऊपर मॉन्यूमेंट्स हैं, छोटे बड़े सभी मिलाकर, और अकबर स्टॉम भी वहाँ पर है। अब कुछ खाने पीने की भी ज़रूर बात करूँगा। जी हाँ, स्ट्रीट फूड हो और आगरा का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन अब उससे पहले फतेहपुर सीकरी में, जब उस ज़माने में 90s में एक गीत फिल्माया गया था जो बड़ा प्यारा था, लवली सॉन्ग था, रोमांटिक सॉन्ग था, और थे उसमें किंग खान। पेश करता हूं कुमार शानू की आवाज में।

वेल, बहुत सारी बातें अब कहने सुनने की हैं और अब आपको बताता हूँ आगरा के खाने के बारे में, यानी कि स्ट्रीट फूड के बारे में। घर में तो अच्छे खाने बनते ही हैं, आपको तो पता ही है वहाँ की बात है, लेकिन फिर भी हाँ, यहाँ दिल भी मीठा है। पेठा सिर्फ मिठाई नहीं, पहचान है मेरी। दालमोठ, बेड़ई और कचौड़ी, सुबह की खुशबू, सुबह का नाश्ता। आपको रमन की गोपाल की अगर खानी हो बेड़ई तो आप जा सकते हैं और संजय चौराहे पर मिलती है। बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई और अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सकता हूँ ज़रूर बताऊँगा। और आगरा के बने हुए जूते, जी हाँ, यहाँ आगरा लेदर शूज दुनिया पहनती है, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और शहर आगरा अगर शायरी ना दे तो वो शहर नहीं। आगरा ने शहर पैदा किए हैं नज़ीर अकबर आबादी, जिंदगी

0: खुराक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है तारकेश्वर सेन गुप्ता। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से हेमंत साखरदांडे और देवास से परेश मीरचंदानी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे व्यक्तित्व पर जो कूटनीति की तीक्ष्णता, विचारों की निर्भीकता और राष्ट्रभक्ति की अटल ज्योति का पर्याय थे। वो लंदन की गलियों में भारत की आजादी की मशाल लिए खड़े थे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की आवाज बनकर वो गूंजे। उनकी बातों में अद्भुत तेज, तर्क और आत्मविश्वास था जो हर चुनौती को चुनौती दे सकता था। भारत की गरिमा को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले वो महानायक थे वीके कृष्ण मेनन। वो एक राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा सन 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। वीके कृष्ण मेनन का जन्म 3 मई सन 1896 को केरल के मालाबार तट पर स्थित पनियंकरा कालीकट में हुआ था, जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम वेंगालिल कृष्णन कृष्ण मेनन था। उनके पिता का नाम कोमाथु कृष्ण कुरुप था, जो कदाथनाडु के राजा के पुत्र थे। इस तरह वो एक राज परिवार से संबद्ध थे। उनकी माताजी भी त्रावणकोर के पूर्व दीवान रमन मेनन की पौत्री थीं। वीके कृष्ण मेनन के पिता ने वकालत का पेशा अपनाया था। वो एक अत्यंत संपन्न तथा प्रभावशाली वकील थे। इस तरह ये एक राजसी वंश परंपरा से संबद्ध एक अत्यंत समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार था। वीके कृष्ण मेनन की आरंभिक शिक्षा थालासेरी में हुई तथा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। बचपन से वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और उनका विद्रोही स्वभाव किशोरावस्था से ही मुखर होने लगा था। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। वो डॉक्टर एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सानिध्य में आए। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित किया। एनी बेसेंट ने उनकी वाक्पटुता और तीक्ष्ण बुद्धि को पहचाना और उन्हें ब्रदर ऑफ सर्विस समूह से जोड़ लिया। यहीं ब्रिटिश राज के प्रति उनके मन में एक आक्रोश ने जन्म लिया। कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने पश्चिमी पोशाक के स्थान पर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश राज के प्रति अस्वीकार्यता और भारत माता के प्रति गहरे प्रेम का स्वर बुलंद किया।

बेसेंट वीके कृष्ण मेनन की प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित थीं। यही कारण है कि उन्होंने सन 1924 में वीके कृष्ण मेनन को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजने का प्रबंध किया। वीके कृष्ण मेनन सन 1924 में इंग्लैंड पहुंचे और लगभग 27 वर्षों तक वो वहीं रहे। लंदन में उनके प्रवास ने उन्हें एक छात्र से एक वैश्विक राजनेता के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया था। वहां वो हेराल्ड लास्की के प्रिय शिष्य बन गए। लास्की ने उन्हें अपना अब तक का सबसे मेधावी छात्र कहा था। लास्की के विचारों ने वीके कृष्ण मेनन के दृष्टिकोण को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसका प्रभाव आने वाले समय में उनके भीतर स्थायी रूप से रहा। यहां उन्होंने एमएससी और एमए के साथ ही कानून की शिक्षा भी पूर्ण की तथा एक बैरिस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त की। वहां रहते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इंडिया लीग की स्थापना की। उन्होंने मूल रूप से डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग को ही पुनर्गठित किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में रहते हुए भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए अभियान चलाना था। ये संगठन भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे भारतीयों को एक मंच पर लाता था। इस तरह ये लंदन में भारतीय स्वतंत्रता की मांग का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गया। इंडिया लीग के माध्यम से वीके कृष्ण मेनन ने ब्रिटिश जनता को भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों, जैसे लाठीचार्ज, बिना मुकदमा चलाए कारावास और संपत्ति की जब्ती के बारे में जागरूक किया। इस तरह इंडिया लीग ने ब्रिटिश लेबर पार्टी, ट्रेड यूनियनों और बुद्धिजीवियों के बीच भारत की पूर्ण स्वतंत्रता यानी स्वराज के लिए व्यापक समर्थन जुटाया। सन 1938 में उन्होंने लंदन में एक विशाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें अफ्रीका और कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। लंदन में रहते हुए उन्होंने प्रकाशन की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने एलन लेन के साथ मिलकर पेंगुइन बुक्स और फिर बाद में पेलिकन बुक्स की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकाशन गृह के माध्यम से उन्होंने आम जनता के लिए शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक सामग्री को सस्ते दामों में सुलभ कराया। सन 1934 में लेबर पार्टी के टिकट पर वो सेंट पैनक्रास से बरो काउंसलर नियुक्त हुए। 14 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने पुस्तकालयों के विस्तार और गरीबों के लिए कानूनी सहायता की दिशा में क्रांतिकारी कार्य किए। उनके योगदान के लिए सेंट पैनक्रॉस ने उन्हें फ्रीडम ऑफ द बरो से सम्मानित किया। स्थानीय परिषद द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वीके कृष्ण मेनन से पहले ये सम्मान केवल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था। सन 1935 में वीके कृष्ण मेनन की भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी और भारत की आजादी के बाद भी ये संबंध अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बना रहा, जिसे आधुनिक भारत के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण जुगलबंदियों में से एक माना जाता है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को पश्चिम में प्रकाशित और लोकप्रिय करने में भी वीके कृष्ण मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लेबर पार्टी ने भारत की भागीदारी पर अपना रुख बदला, तब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। भारत उनकी आत्मा में बसता था और राष्ट्र सेवा को वो सर्वोच्च मानते थे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आजादी के बाद वीके कृष्ण मेनन ब्रिटेन में भारत के पहले उच्चायुक्त नियुक्त हुए और भारत माता की सेवा को वो समर्पित हुए।

वी के कृष्णमेनन एक स्वतंत्र सोच और अपनी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में जब वो पदस्थ थे, तब वो उच्चायुक्त निवास में न रहकर उच्चायोग के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। सन 1952 में उच्चायुक्त का पद छोड़ने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संभाला। यहां उन्होंने अपनी कूटनीतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता से विश्व को चकित कर दिया। इस समय तक दुनिया उन्हें फॉर्मूला मेनन कहने लगी थी। विश्व समुदाय का मानना था कि किसी भी देश में अगर कोई समस्या है तो मेनन कोई न कोई सार्थक समाधान निकाल सकने में अवश्य सक्षम होंगे। सन 1957 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। ये एक ऐतिहासिक भाषण था। पाकिस्तान के दावों का जवाब देते हुए उन्होंने लगभग 8 घंटे तक भाषण दिया, जो आज भी संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। इस तरह उन्होंने कश्मीर मुद्दे की एक सही तस्वीर दुनिया के समक्ष रखी। इसके बाद उन्हें भारत में कश्मीर का नायक कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने केवल भारतीय हितों की ही रक्षा नहीं की, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कोरियाई युद्ध हो, जिनेवा सम्मेलन हो, स्वेज संकट हो या हंगरी संकट, सभी जगह उन्होंने समाधान के सार्थक रास्ते सुझाए। सन 1957 में उत्तरी मुंबई से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वीके कृष्णमेनन भारत के रक्षा मंत्री नियुक्त हुए। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर है। यही कारण है कि उन्होंने भारत में रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए। उन्होंने DRDO को पुनर्गठित और मजबूत किया ताकि स्वदेशी तकनीक विकसित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण भी किया। सेना के लिए वाहनों और टैंक के स्वदेशी उत्पादन हेतु कारखाना स्थापित किया। उन्होंने सैन्य जीवन के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की।

तथा एनसीसी को पेशेवर रूप दिया। सन 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। ये सभी क्षेत्र भारत का हिस्सा बने। ये वी के कृष्ण मेनन की बड़ी सामरिक और राजनीतिक जीत थी। उन्होंने सेना में पदोन्नति की वरिष्ठता आधारित प्रणाली को बदलकर योग्यता आधारित प्रणाली करने की भी वकालत की थी, जिसका अधिक स्वागत नहीं हुआ था। सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय का सारा दोष वी के कृष्ण मेनन पर मढ़ा गया और उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की पैरवी की। सन 1969 में उन्होंने राजनीति में वापसी की, संसद पहुंचे और सन 1971 में फिर से जीत दर्ज की। संसद में अंतिम वर्षों के दौरान वो प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, विशेष रूप से 1966 की वियतनाम शांति योजना और 1971 के बांग्लादेश संकट के समय। 6 अक्टूबर सन 1974 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत ने एक ऐसे मौलिक विचारक को खो दिया जिन्होंने भारत को एक दृष्टि दी कि वो स्वयं अपनी नजर से विश्व को देख सके। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: जी, हम थोड़ी देर बाद समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, उसके बाद विश्व दर्पण और वर्ल्ड न्यूज एक के बाद एक, उसके बाद हम खोलेंगे दिल का मेल बॉक्स 10:30 बजे। ये फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम होता है। आप हमें अपनी फरमाइशें 9868686753 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। तो फिर से इसका अनाउंसमेंट एक बार और करेंगे हम जब वापसी होगी हमारी। आइए समाचार सुनते हैं।
1: जी हाँ, नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। यह अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांत को मान्यता देने और विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद को खत्म करने और उसके खात्मे को करने के लिए मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है।

रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। डेनमार्क के हॉर्सेंस में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हरा दिया। पहले सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी 11-21, 9-21 से हार गए। दूसरे सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को भी 16-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एचएस प्रणॉय भी 19-21, 16-21 से हार गए। लक्ष्य सेन चोट के कारण सेमीफाइनल नहीं खेल सके।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: हेलो हेलो हेलो जी, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, बस कुछ नहीं, प्रैंक कर रहा था, मजा कर रहा था आप लोगों के साथ। हेलो हेलो, आज गया हूँ मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। जी हाँ, 107.1 MHz FM रेनबो पर लेकर आया हूँ नमस्ते भारत, जिस शो के बारे में आप जानते हैं। और आज का सेगमेंट रहेगा, जैसे आपको पता है कि हर संडे हमारा सेगमेंट अलग रहता है, मेरा दिल मेरी बातें। आज का ये शो स्पेशली मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपनी तरफ से और हमारे FM रेनबो फैमिली की तरफ से आप सभी को, JRD टाटा, एक नाम एक सोच एक विरासत। मैं हूं आपका आरजे अभिनव और आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बात है। हम बात करेंगे कैसे इंसान की जो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था बल्कि विजनरी था। और कई बार कहते हैं ना कि बिजनेसमैन अलग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अलग, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे ही और उसके अलावा भी वो एक विजनरी थे, एक ऐसा नाम जिसने भारत को आसमान में उड़ना सिखाया। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, JRD टाटा। दोस्तों, आज हम फ्लैट पकड़ते हैं, टिकट बुक करते हैं, पर कभी सोचा है कि भारत में सब शुरू किसने किया था? आइए बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अब पेश करता हूं सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में ये एक गीत, जिंदा।

जी हाँ, तो फिर जैसे कि मैंने कहा ही था आप सब लोगों से, हेलो हाउ आर यू गाइस, और मैं बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ, आपका हमराज आरजे बना हुआ। जेआरडी टाटा, एक नाम एक सोच एक विरासत। भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट, और 1932 में उन्होंने खुद उड़ाई पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई तक। वो सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, वो भारत के सपनों की उड़ान थी। अगर आज की जेंजी को जेआरडी टाटा को समझना है तो ऐसे समझो, वो कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान नहीं थे, वो रिस्क लेते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने कहा था, आई डू नॉट वॉन्ट इंडिया टू बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर, आई वॉन्ट इंडिया टू बी हैप्पी कंट्री। मतलब सिर्फ पैसा नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन।

पिछली बार पिछले सेगमेंट में लेकर आया था आगरा वाला शो, क्योंकि मैं खुद आगरा से हूं। वैसे आप लोगों को अगर ये बात नहीं पता है तो आज बता रहा हूं। और अब बात कर रहे हैं हम लोग नमस्ते भारत में जेआरडी टाटा जी के बारे में। जी हां, बिल्डिंग इंडिया। उन्होंने सिर्फ कंपनीज नहीं बनाई, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। टाटा एयरलाइंस जो बाद में बना था एयर इंडिया, और आज के आईटी की रीढ़ और भी बहुत सारी कंपनी, टाटा मोटर्स जिसने मोबिलिटी को रीडिफाइन किया था। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा कहते थे कि एम्प्लॉयज आर नॉट वर्कर्स, दे आर फैमिली। कुछ बातें इंटरेस्टिंग जो मैं आप लोगों के पास लेकर आऊंगा, जो कि आप नहीं जानते हैं उनके बारे में। लेकिन साथ साथ पहले कुछ और भी गीत होने चाहिए, और क्योंकि एयर इंडिया की बात हो रही है, फ्लाइट की बात हो रही है, फ्लाइज की बात हो रही है, और क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग की बात हो रही है, तो उड़ जाएगा।

जी हाँ, उड़ जाएगा हम सकेला। वैसे बड़ा पुराना सा ये जो एक भजन है, ये उसी का एक अलग वर्जन था हवाई ज़्यादा मूवी में। बड़ी प्यारी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और वो भी उड़ान के बारे में थी और तुरिया की पहली उड़ान के बारे में थी। और जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला, ये आपके डिटैच होने पर और आत्मा के बारे में और आपके एनलाइटमेंट को भी दर्शाता है। जीआरडी टाटा का जन्म पेरिस में हुआ था। वो फ्रेंच भी थे और इंडियन भी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, पूरी ज़िंदगी काम और देश को दे दी। वो पंक्चुअलिटी के इतने पक्के थे कि मीटिंग्स में एक मिनट लेट होना भी उन्हें पसंद नहीं था। एयर इंडिया को उन्होंने इतनी ऊंचाई दी कि एक समय इसे वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन कहा जाता था।

जी सारे सॉन्ग्स इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि आज बात ही चल रही है ऐसी, और जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात चल रही है उनके बारे में तो आप जान ही गए हैं अभी तक सुन सुनकर। जेआरडी टाटा सिर्फ एक लीडर नहीं थे, एक अच्छे इंसान थे। एक बार उन्होंने एक एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए पर्सनली लेटर लिखा क्योंकि उसे काम में अप्रिसिएशन नहीं मिला था। सोचिए आज के सीईओज में कितनी ये एम्पैथी है। वेल, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे गीतों की फरमाइश की थी, आप सब लोगों के लिए गीत तो मैंने पेश किए थे, दीपा पालकर, हितेंद्र दास, विजेंद्र घाटोल, पंकज मोहाड़, महेश जी, खुर्शीद वैदेही, फिरोज शिगनपुरिया, बाबा दादा, रजनीकांत, प्रदीप, चंद्रिका, और अब ये एक और गीत आप सभी लोगों के लिए तो देता ही हूँ, और एक और गीत की फरमाइश मुझसे आई थी और वो है अर्पिता दास के लिए ये एक गीत आशाएं। लेकिन उससे पहले जिद्दी दिल, जी हाँ।

वेल, कहने सुनने के लिए वैसे काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन अब क्या कहूँ और कहाँ से शुरुआत करूँ। बीच में छोटा सा प्यारा सा एक ब्रेक भी लूँगा। एक शायरी याद आती है, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। जे आर डी टाटा वही थे जो भीड़ से अलग निकले और रास्ता बना गए। लेसन्स फॉर यूथ, आज के युवाओं के लिए जे आर डी टाटा क्या सिखाते हैं? रिस्क लो, एंड आई मीन टू से कैलकुलेटिव रिस्क। एथिक्स मत छोड़ो, लॉन्ग टर्म सोचो, और सबसे जरूरी, रिस्पेक्ट पीपल। सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, इम्पैक्ट है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं नमस्ते भारत में, आज का जो फेवरेट सेगमेंट है मेरा दिल मेरी बातें में, और बात कर रहे हैं हम लोग नन अदर देन जीआरडी टाटा की। जीआरडी टाटा एक नाम नहीं दोस्तों, वो एक माइंडसेट है, और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो शॉर्टकट मत ढूंढो, विजन बनाओ और बस आगे बढ़ जाओ। और कुछ और बातें करूंगा, कुछ रोमांटिक से सॉन्ग भी होने चाहिए और कुछ अलग अलग सॉन्ग भी होने चाहिए। पहले लेकर आता हूं आप लोगों के पास आशाएं, और उसके बाद थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं इस शो में।

जी हाँ, आशा है और उम्मीद है और बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ। मैं हूँ आपका अमराज आरजे बना और ये है शो मेरा दिल और मेरी बातें। वेल, आपका दिल और आपकी बातें क्या कह रहा है, पूरे शो को सुनने के बाद मुझे अपने फीडबैक आप जरूर भेज सकते हैं। प्लीज़ भेजिएगा 8657661071। और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि आपके कॉल्स उठा पाऊँ। आज बहुत कम कॉल्स आए थे। हमारा नंबर है 02245154132 और 33। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 02245154132 और 33। आशा के बाद आएगा चले चलो। और लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास कुछ और लाऊं और यू टर्न दूं सॉन्ग्स को। मुंबई शहर जिसकी वाइब भी कुछ अलग होती है और मुंबई शहर में लाइफ इन मेट्रो का ये सबसे पहला सॉन्ग जो मुझे लगता है और आज के दिन संडे के दिन ये सुनना आपका और दिन बना देगा, जब आप चाय के चुस्के ले रहे हो, कॉफी पी रहे हो, ट्रेन में कहीं चल रहे हैं और किसी से मिलने जा रहे हैं। स्पेशली आप सभी लोगों को डेडिकेट।

वेल, मैं हूं आपका हमराज आरजे अपना, और ये था मेरा दिल मेरी बातें। कल फिर से मिलेंगे, यानी कि अगली बार फिर से मिलेंगे और एक और कहानी के साथ। तब तक सोचिए बड़ा और उड़ान भरिए। और हमारा शो कैसा लगा प्लीज मुझे अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। FM रेनबो मुंबई के नाम से हम लोग हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, और AIR_ मुंबई के नाम से हैं ट्विटर पर, यानी कि जो अब हो गया X। और मेरा नाम है आरजे अभिनव पराशर। सभी जगहों पर आप लोगों को मिल जाऊंगा। पेश करता हूं बैक टू बैक कुछ बेहतरीन से गीत। अगली आवाज आपको सुनाई देगी आरजे भावना की, जो कि आ चुकी है स्टूडियो में। आज को होस्ट या को जोक नहीं है, लेकिन वो अपना अलग शो लेकर आएंगी। और उसके बाद बस उम्मीद रखिए कि हम लोग भी कभी एक बार आप लोगों के साथ को होस्ट और को जोक शो में आए। थैंक यू सो मच। बने रहिए हम लोगों के साथ। स्टे ट्यून्ड।

जाने से पहले और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को बहुत मजबूत करेगी। भारत आ रहे मार्शल आइलैंड्स ध्वज के LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। क्यूबा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य धमकियों की कड़ी निंदा की है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियास कैनल ने कहा कि ट्रंप की क्यूबा के खिलाफ सैन्य आक्रामकता की धमकी खतरनाक संकेत है। उन्होंने क्यूबा की संप्रभुता की रक्षा का संकल्प व्यक्त किया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। ये मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। अगली आवाज होगी RJ भावना की, तब तक के लिए लेता हूं बड़ा प्यारा सा छोटा सा ब्रेक।

0: का कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीला मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख मन की बात में करते हैं, उन विषयों के विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रम में और उस विषय के बारे में अपना ज्ञान वर्धन करते हैं उनकी बातों से।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया है सेंसस का, जनगणना का, और हमें प्रेरित किया है कि हम इस विषय के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग भी दें। तो इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। मैं स्वागत कर रही हूं सबसे पहले श्री अजय गर्ग जी का। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और मैं स्वागत कर रही हूं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा का। आप DD हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: तो आइए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जनगणना का उल्लेख किया है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष ID मिलती है। यह ID आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही ID दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है या गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें, जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
0: तो सुना आपने किन शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित किया है कि इस विषय के बारे में हम जानें और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग करें। तो अब मैं बहुत सारे सवाल लेकर, अपने सभी श्रोताओं के मन में जो सवाल है वो लेकर, अपने साथियों के सवाल लेकर यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और हमारे जो दोनों विशेषज्ञ हैं आज हम इनसे जानेंगे इनके उत्तर। तो मैं शुरुआत करती हूँ अजय जी से। अजय गर्ग जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं जनगणना, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों है देश को?
1: हमारी जो नीतियां बननी है
0: जी,
1: तो हमारे पास पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, शहरों में, गांवों में कितने लोग रह रहे हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, कितने हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उम्र के हिसाब से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तभी आप उसके हिसाब से स्वास्थ्य की, समाज कल्याण की और विभिन्न योजनाओं को आप एक मूर्त रूप दे सकते हैं
0: जी।
1: आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जनगणना भारत में सबसे पहले 1871 में हुई
0: जी,
1: लेकिन वो एक साथ नहीं हुई थी, मतलब हर प्रांत में अलग अलग समय पे हुई थी, उसे नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं। 1881 में पहली बार जनगणना सिंक्रोनस हुई, सभी एक साथ हुई। उसके बाद ये हर 10 साल में एक जनगणना

0: होती रही।
1: जी।
0: जनगणना ही हमारी सभी नीतियों का डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर जैसे परिसीमन हुआ
1: जी,
0: हमारी जो विधानसभा की सीट्स हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उन सब पे जनगणना में क्या सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ हम जनगणना में सिर्फ लोगों की संख्या की गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितने मेल हैं, कितने हमारे वुमेन हैं, कितने बच्चे हैं, उसके साथ साथ हम जो हैबिटेशन है
1: जी,
0: जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं, उसकी भी हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि दीवारें कैसी हैं, छत कैसी बनी हुई है, किस तरीके का ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और पानी की सुविधा किस तरीके की है, 30 तरीके की हम एट्रीब्यूट्स इकट्ठी करते हैं
1: जी,
0: जिसमें लोग रह रहे हैं। और इसके बाद जिसे हम पॉपुलेशन इनुमरेशन कहते हैं, जिसमें लोगों की हम संख्या की गणना कर रहे हैं, उसमें लोगों की जो हर व्यक्ति की करीब 25 से 30 हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि कितना पड़ा हुआ है, किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में है वो, उसका जो व्यवसाय का जगह है कितना दूर है उससे, कितना उसे चलना पड़ता है
1: जी,
0: कौन से धर्म का है वो, इस बार हम जाति का भी उनसे डिटेल लेंगे
1: जी,
0: तो इस तरीके से कौन सी भाषा बोलता है वो, तो हमारे पास बहुत रिच डेटाबेस है जिसके आधार पे हम लोग, तो ये मोटा मोटा सा जनगणना का
1: जी। मेरा इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल था, अक्सर लोगों के मन में ये बात आती है कि जब जनगणना की बात है तो सिर्फ ये जान लेना काफी होना चाहिए कि इस घर में 5 व्यक्ति हैं और इस घर में 7 व्यक्ति हैं, यानी हम एक नंबर हैं और कुल संख्या आपको पता चल गई। इतने विस्तार में क्यों जानना है कि हम क्या काम करते हैं, हम कैसे घर में रह रहे हैं? लेकिन अभी आपकी बातों से ही ये जवाब मिला कि आगे जो नीतियां बनेंगी, जिस तरह के बेनिफिट्स दिए जाने हैं लोगों को, उनके लिए भी ये डेटा जो है काम आएगा बाद में
0: जी।
1: तो एक सवाल मैं जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, जनगणना होनी है ये सबको पता है, लोग तो तैयार भी हैं, इस बारे में बात भी हो रही है, लेकिन उससे पहले पूरा विभाग जो है, पूरा मंत्रालय जो है, वो किस तरह की तैयारियों में लगा है? आजकल काम का कितना दबाव है वो बताएं।
2: देखिए, काम का दबाव तो बहुत है अभी
1: जी।
2: जब आप मंत्रालय का जो तैयारी के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, ये लगभग अभी 1 साल पहले ये शुरू हो गई थी
1: जी।
2: और ये जनगणना जो होती है ये एक सेंसस एक्ट के तहत होती है, ये 1948। तो पहले हमारा जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो पहले अपना इंटेंशन पहले वो दर्ज करते हैं गेजेट में। तो ये आई थी आपके जून महीने में आई थी, 2025 जून महीने में आई थी
1: जी।
2: उसके बाद हर राज्य और केंद्र शासित जो अंचल है वो भी अपने मतलब गेजेट में उसको फिर से रीनोटिफाई करते हैं कि हमारे भी स्टेट में, इंडियन टेरिटोरी में भी सेंसस करानी है
1: जी।
2: तो इस तरीके का एनसीटी और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको रीनोटिफाई किया था जुलाई में, जुलाई 2025 साल में। तो 2025 जुलाई महीने से लेकर आज तक हर दिन हम तैयारी में जुड़े हैं, और अभी सेंसस भी ऐसे स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब बिना प्री प्लान करते हुए ये होती है सेंसस जैसे काम में, कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। और लगभग इसमें, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो 50-55 हजार से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं अभी काम में
1: जी।
2: जी,
1: तो अजय जी, अगले सवाल से पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर पूछना चाहूंगी और उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है।
0: जी जी जी, तो मुसाफिर हूँ यारों
1: जी।
0: हाँ,
1: ये गाना पसंद है आपको? ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: बहुत ही प्यारा सा गाना। गाने में तो भले ही जो कलाकार है और जो हमारे सिंगर है उन्होंने कह दिया ना घर है ना ठिकाना, लेकिन हमें अपने घर ठिकाने का पूरा पूरा और सही सही पता जरूर बताना है सेंसेस के लिए। तो अब मैं अजय जी आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं जनगणना की, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे डिटेल इस समय हम जो है वो ले रहे हैं, लोगों के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे में और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपनी ओर से भी जो जनता है वो उसमें सहयोग करेगी, शुरुआत करेगी, तो संख्या बल जो है दुनिया में वो हमारी एक ताकत है, लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो यही काम बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाता है। तो ऐसे में ये बताएं कि आपने किस तरह का जो पूरा एक तंत्र है वो खड़ा किया है, किन लोगों को शामिल किया है इसमें, और वो कितने रिलायबल हैं, हम कितना भरोसा करते हैं उन लोगों पर जो घरों में आएंगे और हमारा डेटा इकट्ठा करेंगे।
1: जी, इसमें क्या होता है कि जो घर में जाते हैं, हर घर में विजिट करते हैं, उनको हम इनोमिनेटर कहते हैं
0: जी।
1: उसमें हमने क्या किया है कि दिल्ली को करीब हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है और हर ब्लॉक में करीब 200 के आसपास घर हैं
0: जी।
1: तो एक ब्लॉक को एक इनोमिनेटर का काम दे दिया जाता है और इस तरीके से 6 इनोमिनेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है। तो करीब हम लोगों ने 46,000 इनोमिनेटर लगाए हैं, तो करीब 8-9,000 सुपरवाइजर लगाए हैं
0: जी।
1: फिर उनके ऊपर होते हैं चार्ज ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर के ऊपर होते हैं डीएम, एडीएम और एसडीएम अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज सेंसस का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो इनोमिनेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के जहां पर हैं। सिमिलरली जो सुपरवाइजर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर लोग हैं। हर इनोमिनेटर के पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, एक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, तो आप देख सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और जिस डिपार्टमेंट का होगा उस डिपार्टमेंट का भी उसके पास कार्ड होगा। कोई आपको परेशानी है तो आप अपने एरिया के जो एसडीएम हैं या डीएम हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने एक एलोबोरेट वो कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी आरडब्ल्यूएच के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पब्लिसिटी भी हमारी हो रही है, तो ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपना संतुष्टि कर लें, कोई आता है आपको विजिट करने आता है तो उसका आई कार्ड देखें, वो देखें। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एमसीडी एरिया में जनगणना है पहले फेज की, वो हमारी 16 मई से शुरू हो रही है
0: जी,
1: 16 मई से लेके 14 जून तक, तो उस समय लोग आएंगे वहाँ पर
0: जी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम है और जो लोग आएंगे उनके पास अपना
1: आई कार्ड
0: भी होगा और उस तरह के दस्तावेज होंगे कि उनसे हम पूछ सकते हैं। और ये ज्यादातर उस तरह के लोग हैं जो पहले ही सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं,
1: सरकारी कर्मचारी हैं,
0: तो उन पर भरोसा आसानी से किया जा सकता है। आम लोग जो डेटा देंगे वो पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा,
1: वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा
0: जी।
1: वो जो आपने डेटा दिया है वो इनोमिनेटर अगर उसको किसी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है
0: जी। तो जितेंद्र जी मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे जो डेटा दिया गया क्या उसके सत्यापन के लिए भी कुछ और हमें कागजात देने होंगे? अगर एक व्यक्ति दो घरों में रह रहा है, वो अलग अलग जोन में वो घर पड़ते हैं, तो क्या सत्यापन के लिए भी कुछ देना होगा? और जैसे छात्र हैं किराए पर रह रहे हैं तो उनका परिवार कहीं और है, वो कहीं और है, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होगा?
2: देखिए, हमारे जनगणना में हम एक चीज को हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफेक्टो मेथड, मतलब जो जहाँ पे है नॉर्मली जो जहाँ पे रह रहे हैं हम वहाँ पे उनको गिनेंगे
0: जी।
2: तो जैसे आप अभी दो ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लिए, एक तो जो रेंट में रहने

0: वाले लोग और जो है कि स्टूडेंट्स, और जिसका नंबर शायद बहुत ही ज्यादा है दिल्ली जैसे जगह में, अगर वो लोग नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं
1: जी
0: और सेंसस के दौरान अगर उनको यहीं पे अगर पाया जाता है, जो भी एनिमल उनके घर में जाएंगे तो उनकी गिनती यहीं होनी चाहिए।
1: जी
0: और इसमें आपने और जो दूसरे जो सवाल पूछे कि सत्यापन कैसे किया जाएगा, तो सेंसस में हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं,
1: जी
0: कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। रेस्पोंडेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, और ये टोटली ये रेस्पोंडेंट बेस्ड आंसर्स होती है ये, तो इसमें उसको वेरिफिकेशन करने की कोई स्कोप नहीं है।
1: जी
0: तो जो भी एनिमेटर जाएंगे वो केवल हमारे जो शेड्यूल में जो दिया हुआ क्वेश्चन को वो पूछेंगे, और रेस्पोंडेंट जो आंसर देगा उसको वो रिकॉर्ड करेंगे।
1: जी
0: और ज़्यादातर ये हमारे दिल्ली जैसे जगह पे कि हम लोग देखे हैं पिछले सेंसस में भी, कि जो रेंट में रहते हैं या तो जो स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनका यहाँ पे गिनती सही नंबर पे होती नहीं है।
1: जी
0: और इस बार हम काफ़ी इस चीज़ के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, जो पब्लिसिटी हमारे जो होती है उसमें भी हम बार बार सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं कि अपने लोकल लेवल पे भी ये जागरूक लाए कि जो रेंट में रहने वाले लोगों को भी यहाँ पे गिना जाए।
1: जी
0: और इसके पीछे का खास एक मकसद भी है, अगर उनके नंबर हम दिल्ली में अगर नहीं गिनेंगे तो बहुत बड़ी एक के प्रोपोर्शन लोगों को हम छोड़ देंगे।
1: जी
0: और आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के जो भी रिसोर्स है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपके बेसिक एमिनिटीज जिसमें ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये तो दिल्ली के ही यूज़ कर रहे हैं। तो
1: जी
0: अनलेस अनटिल उनका नंबर हमें पता चले, बेटर प्लानिंग भी नहीं बना सकते हम दिल्ली के लिए।
1: जी
0: तो ये इससे आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये जनरल पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके घरों में कोई पीजी में रह रहा हो या तो कोई रेंट में रह रहा हो तो उनको भी जरूर गिनती कराए
1: जी
0: जनगणना में।
1: और दिल्ली हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, भारतवर्ष में ही यानी हर स्थान पर यही
0: जी
1: प्रक्रिया
0: जी
1: है।
0: जी ये दिल्ली का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली को देखते हैं, बट ये जो मैंने जो बताया अभी ये पूरे भारत के लिए लागू है।
1: जी अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बाद में नीतियां भी बनाई जाएंगी, उनका लाभ मिलेगा आम लोगों को, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव होगा कि अगर हम न बताना चाहें अपने बारे में, हम जनगणना में भाग न लेना चाहें, तो क्या हम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या ये जरूरी है भाग लेना?
2: हाँ, जरूरी है।
1: जी
2: सेंसस जो कानून है 1948 का, वो हर नागरिक के ऊपर एक जिम्मेवारी देता है कि
1: जी
2: वो सही जानकारी दे
1: जी
2: जो उनसे मांगी जाएगी, जो पूछी जाए।
1: जी और ऐसे में क्या डबल काउंटिंग भी हो जाती है, जैसा कि अभी बात की जितेंद्र जी ने, कि कोई किसी का परिवार मान लिया उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहा है छोटे से गांव में, और उनका बच्चा दिल्ली में आकर पढ़ रहा है या मुंबई में है, तो मुंबई में वो रेंट पर रहता है, वहां उसकी गिनती हो गई है, ऐसे में परिवार में जो माता पिता हैं वो भी अगर उसके बारे में बताएं, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें पता चल पाए कि दो जगह एक ही व्यक्ति का नाम गिना जा चुका है?
2: उसको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100%, लेकिन जो नियम ये है कि जो जहाँ पर नॉर्मली रहता है वो वहीं पे काउंट होगा।
1: जी
2: अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो यहीं पे काउंट होगा।
1: जी जो जहाँ रह रहा है उसकी
2: नॉर्मली जहाँ
1: वहीं
2: पे
1: पर
2: रह
1: होनी
2: रहा है,
1: चाहिए।
2: हाँ, सामान्यतः जहाँ पे रह रहा है वहीं पे काउंट होगा, वो वहीं पे उसे अपने आप को काउंट कराना चाहिए।
1: जी जो मकान मालिक होते हैं उनके मन में अपनी संपत्ति को लेकर अक्सर एक डर रहता है, इसीलिए जो रेंट एग्रीमेंट भी होते हैं कई बार वो बहुत डर के साथ बनाते हैं या कुछ क्लॉज उसमें रखते हैं, ऐसे में अगर जनगणना में किराए दारों को उसी संपत्ति पर गिना जाएगा, उनका एड्रेस वही जनगणना में शामिल होगा, तो क्या आगे चलकर मकान मालिक को इससे कोई खतरा हो सकता है? उन्हें डरना चाहिए क्या इस बात से?
2: नहीं, जो आपने जनगणना में इन्फॉर्मेशन दी है
1: जी
2: वो ना तो कोर्ट उसको मंगाती है ना आरटीआई में वो प्रोवाइड की जाती है।
1: जी यानी जो कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार है, अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा है और पीजी के रूप में रह रहा है, तो उनकी भी सही जानकारी देनी चाहिए, और आगे चलकर वो आपकी संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकते,
2: उसके आधार पर नहीं कर सकते,
1: उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। जी मैं अब जितेंद्र जी आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को।
0: मेरे पसंद का एक गाना आप चला सकते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता।
1: जी तो आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की और हमारे साथ स्टूडियो में इस समय है श्री अजय गर्ग। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं, और साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में, और हमारे दोनों ही जो विशेषज्ञ हैं हमारी जानकारी बढ़ा रहे हैं जनगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो अजय जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जनगणना का प्रोसेस है आपने बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि शुरुआत जो है वो जनता को अपनी ओर से करनी है, दो चरण इसके आमतौर पर होंगे। तो वो पहला चरण क्या है, हम किस तरह से ऑनलाइन कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अपनी जानकारी देंगे?
1: हाँ, इस बार जैसे सेल्फ इनुमरेशन कहते हैं, स्वगणना उसको रखा गया है। तो इसमें जैसे हम MCD एरिया का ले लें, तो MCD एरिया में 1 मई से लेकर 15 मई तक आप स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना में सेल्फ इनुमरेशन का मतलब ये है कि आप उस पोर्टल पे चले जाएं
0: जी,
1: और बहुत आसान है, अपनी डिटेल खुद भर दें उसमें, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं भरने में
0: जी।
1: और जैसे ही आपने भर के उसको आपने सबमिट किया पोर्टल पे, तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है
0: जी,
1: जिसे सेल्फ इनुमरेशन ID बोलते हैं। तो इनुमरेटर जब आपके यहाँ पे आएगा तो आप उसे अपनी ऐसी ID दे देंगे, तो फिर वो नहीं भरेगा डिटेल, जो आपकी डिटेल है उसके पास आ जाएगी
0: जी,
1: वो उसके हिसाब से आगे। तो इससे काम काफी त्वरित हो जाएगा। बाहर के कई पाश्चात्य देशों में स्वगणना का है, तो हमारे यहाँ पर ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। डिजिटल सेंसस का एक एक कंपोनेंट है
0: जी।
1: और दूसरा पक्ष क्या होता है, जब हमारा 1 से 15 तक स्वगणना है, सेल्फ इनुमरेशन है, फिर 16 मई से लेकर 14 जून तक MCD वाले एरिया में
0: जी,
1: हमारा फील्ड ऑपरेशन, मतलब इनोवेटर घर घर जाएंगे, और जिन्होंने स्वगणना नहीं कर पाते हैं तो वो उनका डिटेल इकट्ठी करेंगे, और स्वगणना वालों की, सेल्फ इनुमरेशन वालों की सिर्फ SC ID ले लेंगे, नंबर ले लेंगे और
0: जी,
1: इस तरीके
0: तो प्रक्रिया जल्दी भी हो जाएगी, समय
1: जल्दी
0: कम लगेगा,
1: बहुत जल्दी हो जाएगी
0: जी। हाँ। ऐसे में मुझे ये जानना है कि जब जनगणना हो रही है और घर पर अधिकारी आए हैं उन्हें डिटेल देनी है, ऐसे में अगर कुछ समय के लिए कोई

0: मतलब एक ही आदमी बताते हैं जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है
1: जी,
0: कि भाई हमारे इसमें चार लोग हैं या पांच लोग हैं
1: जी। ऐसे में जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है, अगर उनका देहांत हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो किसका नाम वहाँ लिखवाया जाएगा मुखिया के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर?
0: हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो कोई भी, जरूरी नहीं है कि वो घर का मालिक ही हो, जो भी वहाँ पर, बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी जानकारी दे रहा है घर के बारे में, जिसको घर के बारे में मालूम हो।
1: तो उस एड्रेस पर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को और वो परिवार की
0: जानकारी दे रहा है
1: जी। तो इस तरह की कंफ्यूजन नहीं रखने हैं कि किसके नाम मकान है,
0: नहीं, और नहीं, वो व्यक्ति रहे वो नहीं
1: जी।
0: बात यह है कि कोई परिवार रह रहा है घर में, इस मान लीजिए इधर कोई रह रहा है
1: जी,
0: तो इसको इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर्स की एट्रीब्यूट्स हैं, वो
1: जी वो बताने हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी सर ने बताया कि एक घर का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है
0: जी,
1: तो जो कच्ची कॉलोनियां होती हैं, झुग्गी बस्ती जो है, जैसे एक परिवार वहां रह रहा है, वो एड्रेस कहीं कागजों पर पक्का नहीं है
2: जी,
1: तो ऐसे में वो क्या करें
2: जी? देखिये, जनगणना में हम कभी ये नहीं देखने के लिए कोशिश करते हैं कि ये घर ऑथोराइज कॉलोनी में है कि अनऑथोराइज कॉलोनी में है, रहने वाले आदमी के नाम पे ये कागजात बना है कि नहीं बना, ये हमें नहीं देखना है
1: जी।
2: हमारा जो मकसद है कि पूरे अगर कोई एरिया, जैसे आप, मैं दिल्ली का ही फिर से एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, तो जैसे दिल्ली में जैसे सर बता रहे थे कि 46,000 के आसपास हम लोगों ने ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इन ब्लॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कहने का मतलब है जितने भी स्ट्रक्चर मकान तो ये भी होंगे, उनको हम पहले फर्स्ट फेज में उसका हम कवर करेंगे
1: जी,
2: जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस, उसमें जाके पूरी डिटेल लिया जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी हम ये नहीं पूछ रहे हैं जो स्ट्रक्चर में जो रहने वाले पर्सन जो है एक्चुअल उसका वो ओनर है कि नहीं है
1: जी,
2: ये हम कभी नहीं पूछते हैं। और हम सेंसस में हम सभी जगह, चाहे वो ऑथराइज हो, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो झुग्गी जो आप बता रहे थे, हम सभी जगह हम उसको जाके सेंसस कराएंगे
1: जी।
2: हाँ, और इसमें कोई लीगलिटी देखने का कहीं पर भी स्कोप नहीं है। अगर हमारे जो शेड्यूल भी अगर आप देखेंगे, जिसमें हम 33 क्वेश्चन पूछने वाले हैं अभी
1: जी,
2: पहला चरण में, तो यहाँ पे कहीं पे लीगल डॉक्यूमेंट्स का पूछने का कहीं पर भी प्रावधान ही नहीं है
1: जी। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी वजह से गलत सूचना दे दी गई है परिवार के किसी सदस्य के द्वारा और वो बाद में सही करवानी है, तो क्या ये संभव है? इसका क्या प्रोसेस होगा?
0: क्योंकि इस बार डिजिटल है, ऐप के थ्रू डिटेल इकट्ठी की जाती है
1: जी,
0: तो अगर ऐप में मतलब जो एनुमरेटर है उसने सबमिट कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगी वो,
1: फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता,
0: उसमें सुधार नहीं होगा
1: जी। जैसे गांव देहात में होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, वृद्ध हैं, उन्हें पता नहीं है कि बच्चों ने जहां रह रहे हैं वहां अपनी जानकारी दे दी है, और वो भी बता देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो परिवार का सदस्य तो है ही, तो वो डबल एक तरह से हो गया प्रोसेस, तो उसमें क्या किया जा सकता?
0: देखिए, डुप्लीकेशन हो सकता है, जो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस फेज में हम जो कर रहे हैं वो हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं
1: जी,
0: तो उसमें हम मोटा मोटी यही मांग रहे हैं कि जो आदमी उस घर में नॉर्मली रहता है, तो हो सकता है कि लोग, कुछ लोग इस तरीके का
1: जी। और
0: वैसे तो इनोमरेटर उनको जाके समझाता है, भाई इनोमरेटर जाके समझाता है कि भाई जो बाहर रह रहे हैं वो मतलब उस तरीके से उनको जानकारी देता
1: जी,
0: है
1: उस समय भी उनको पहले समझाया जाएगा, तब उनसे डिटेल ली जाएगी जी। और जो घर लंबे समय तक बंद मिले उनके बिहाफ पर कौन जानकारी देगा?
0: नहीं, वो तो लॉक्ड लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं
1: जी। ठीक है, तो जितेंद्र जी, अब
2: इसमें मैं थोड़ा सा, सर ने तो बता दिए, बट जो हमारे जो एनुमरेटर या तो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनका बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है
1: जी,
2: 3 दिन की, और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको अच्छे से समझाते हैं कि हमारे सेंसस के जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग कौन हो सकते हैं, जैसे आपका जो सवाल था
1: जी,
2: कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उसके होम स्टेट में है, तो वो एनिमेटर जब उनके घर विजिट करेंगे तो वो जनरली कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे
1: जी।
2: जैसे सपोज ओल्ड पेरेंट्स है तो उनको ये पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या आपके साथ रह रहे हैं, कि वो बाहर रह रहे हैं, तो इस तरीके एकदम से जाके ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके इस घर में कितने लोग रहते हैं, थोड़ी सी प्रोबिंग टेक्निक्स को यूज करके वो अपने क्वेश्चन करेंगे
1: जी,
2: ताकि हमारा जो सही जो सवाल है उनसे हम निकाल सकते हैं या तो पूछ सकते हैं, ले सकते हैं उनसे
1: जी।
2: और लॉक्ड वाले सर ने बता दिए, बट हमारे जो पहला चरण का जो समय सीमा जो है वो 30 दिन की होती है, तो ये 30 दिन के अंदर अगर एनुमरेटर फर्स्ट या सेकेंड डे में जाके देखा कि घर लॉक्ड है, तो उसका कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सेकेंड या थर्ड टाइम भी जाके उसको चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। कई बार जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो सुबह वो निकल जाते हैं अपने काम में, तो मैं भी अगले दिन वो शाम को जाए
1: जी।
2: और जैसे ऐसे भी परिवार है जो मंडे से

0: लेके फ्राइडे तक वो बहुत बिजी होते हैं, तो उनको रिविजिट करने के लिए वो एक बार सैटरडे या तो संडे को चले जाए, तो एक बार रिकन्फर्म करके उसको लॉक या तो वैकेंड लिखे, ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग जो रहने वाले एक्चुअल जो वो ना छूटे। मेन पर्पज हमारा वो है, इसीलिए 30 दिन का वो दिया गया है विंडो पीरियड। और ये 30 डेज के बाद भी अगर उनको रिकन्फर्मेशन के बाद भी पता चलती है कि एक घर वैकेंट है, लॉक्ड है, तो उनको वही मार्क करनी है, लॉक्ड या वैकेंट।
1: जी, यानी पूरा प्रयास किया जाएगा कि सही जानकारी दर्ज हो और सही समय पर भी हो, जो सुविधाजनक समय है।
2: उसमें बेसिकली जो जितेंद्र ने बोला कि जो लॉक्ड हाउस है उसको एक दो बार
1: जी प्रयास किया जाएगा,
2: एक दो बार फिर से विजिट किया जाता है।
1: जी, यहाँ अजय जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसा अभी बताया जितेंद्र जी ने कि प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो आपने भी बातचीत के माध्यम से बताया कि कई चीजें नई हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पहले जनगणना हुई है भारत में और जो इस बार हो रही है, तकनीकी तौर पर, व्यावहारिक तौर पर क्या अंतर है प्रक्रिया में?
2: तकनीकी तौर पर यह है कि इसमें हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके 4 डिजिटल टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो है जिसे हम कहते हैं कि CMMS पोर्टल, जहां पर पूरा सेंसस का जो मैनेजमेंट है तो उसको हम इसके थ्रू, इसमें जितने भी, जैसे पूरी कंट्री में करीब 34 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनको इंगेज किया जा रहा है सेंसस प्रोसेस के लिए, तो उन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया
1: जी।
2: फिर उनको अलॉटमेंट है कहाँ पे ड्यूटी करनी है, पूरा उसका मैनेजमेंट इसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, तो एक अगेन ये पोर्टल है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी जो होती है
1: जी
2: गांव की, म्यूनिसिपल वार्ड की, सब डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर हम उसको जियो रेफरेंस्ड ब्लॉक्स काट रहे हैं। मतलब एक ब्लॉक इनुमरेटर को दिया जाता है ना, तो जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया कि दिल्ली को हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है
1: जी।
2: और ये 46,000 ब्लॉक जियो रेफरेंस्ड है। तीसरा जो हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल, जिसमें व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ इनुमरेशन कर सकता है। और जो चौथा है, पहले बड़े बड़े फॉर्म लेके जाते थे हमारे इनुमरेटर जिसमें वो डिटेल लिखते थे, अब सिर्फ मोबाइल फोन पे ऐप के माध्यम से वो डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, वो उससे बहुत तेजी से डेटा इकट्ठा हो रहा है
1: जी।
2: पहले 20-25 मिनट लगता था उसको भरने में फॉर्म को, अब हार्डली 10 मिनट लगता है
1: जी। 10 से 15 मिनट। और व्यावहारिक तौर पर आपने बताया कि कुछ प्रश्न जो हैं वो और जोड़े गए हैं, लेकिन वो भी इसलिए कि बाद में बेहतर सुविधाएं दी जा सके।
2: हाँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं अब जोड़े गए 2011 के, उससे
1: जी
2: कुछ ही अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत एक्चुअली क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, एक हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी होती है
1: जी,
2: वो डिसाइड करती है कि सेंसस में कौन कौन से सवाल, कि कोई डिपार्टमेंट कहता था मुझे इसका चाहिए, डिटेल चाहिए
1: जी। जैसे कई बार आम लोग जो हैं वो इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि इस एरिया में हमारे इतने लोग हैं लेकिन सीधी बस सुविधा कोई नहीं है, या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो समस्या है, या बिजली पानी की दिक्कत है, ये होता है। तो हम एक विभाग को जानकारी दे रहे हैं लेकिन आगे ये कई विभागों तक पहुंचती है और कई बेहतर सुविधाएं हमें मिलती हैं, उसमें चिकित्सा सुविधा भी हुई, कई तरह के सरकारी डिस्पेंसरीज, ये सब। तो और इसीलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी
2: बहुत
1: है
2: जी,
1: जी। अब जितेंद्र जी ये बताएं कि जब हम अपनी जानकारी देते हैं सेंसस के लिए, तो क्या इससे कोई आर्थिक लाभ भी होगा? कुछ लोगों के मन में ये बात है कि हमें बदले में सरकार से कुछ पैसा मिलेगा क्या, हम अपनी जानकारी दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो।
0: देखिये, सेंसस में कोई डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक के लिए नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो सेंसस एकमात्र सोर्स है जो वर्ल्ड लेवल, जो आपके अर्बन एरिया का सबसे जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है
1: जी,
0: और रूरल एरिया में जो विलेज है, तो इतने लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डेटा प्रोवाइड करती है। और जैसे हम बता रहे थे, सर भी बता रहे थे कि सेंसस 2 फेज में हो रही है। पहला फेज में हम हाउस लिस्टिंग करते हैं और हाउस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी कलेक्ट करते हैं, और सेकेंड में पॉपुलेशन एनुमरेशन करेंगे, मतलब उतने वार्ड में, उतने एरिया का वार्ड का जो भी होगा उसमें कितने लोग रहते हैं वो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं
1: जी।
0: सिमिलरली विलेज का भी, तो इतने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा कि इतने घरों में, मे बी इतने नंबर ऑफ घरों में अभी LPG कनेक्शन नहीं है, कि लैट्रिन फैसिलिटी नहीं है, कि इनके अभी भी जो मकान जो है वो कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे स्कीम के लिए शायद वो बेनिफिशियरी बन जाएंगे। और या तो आप अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना जो चल रही है अभी सरकार के द्वारा, तो उसमें जिस जिस घरों में अभी LPG कनेक्शन नहीं है तो वहाँ के वो सब घर अभी यहाँ के लिए

0: बेनिफिशियरी बन जाएंगे
1: जी।
0: तो ये एक डायरेक्टली कनेक्शन है सेंसर्स का डेटा एंड अवर गवर्नमेंट के पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप एकदम डायरेक्ट बेनिफिट जैसे आर्थिक जैसे आप बता रहे थे वो ना देख के जितने लोग यहाँ पे सही तरीके से अपने पार्टिसिपेशन करेंगे और आंसर्स देंगे उतने अच्छे पॉलिसी एंड प्रोग्राम बन सकती है देश के लिए, वो भी छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे
1: जी।
2: तो जैसे आपको एक उदाहरण दें कि हम फेज वन में डिटेल इकट्ठी करते हैं कि किस तरीके का ईंधन इस्तेमाल होता है घर में, तो फिर हमारे पास पूरा डेटा है कि भारत के कौन से हिस्से में लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, कितने घरों में एलपीजी है, क्या है, हमारे पास डेटा है। तो उसके हिसाब से हम एक प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जैसे ड्रिंकिंग वाटर की है जी, तो हम पता करते हैं कि साहब कितने घरों में नल है, तो हमारे पास हमें ये मालूम पड़ जाता है कि साहब इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो हिस्सा है इन इन ब्लॉक्स में वहां पर वो कुएं से पानी लाते हैं, किसी पोखर से पानी लाते हैं। तो फिर हम एक इंटरवेंशन स्कीम बना सकते हैं कि साहब यहाँ पे हमें लगानी है
1: जी,
2: यहाँ पे टैप वाटर पहुंचानी है। तो जैसे सीवर फैसिलिटी है उसकी भी डिटेल हम इकट्ठी करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस कॉलोनी में सीवर फैसिलिटी नहीं है। तो ये डेटा इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे बैंकिंग का हो गया जी,
1: जी
2: तो बैंकिंग का हमें मालूम पड़ गया कि साहब इस शहर में, इस शहर के पर्टिकुलर पार्ट में बैंकिंग बहुत कम लोगों के अकाउंट खुले हैं, तो उस हिसाब से स्कीम बन सकती है कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए।
1: यानी ये जो डेटा है बहुत ही विस्तारित तरीके से सोचा जाता है इस पर, और किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता है, और जो सोचा जाता है वो पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचा जाता है कि जिस चीज का अभाव है उसे हम दूर कर पाए जी। यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अजय जी, आपने बातचीत में कहा कि टीचर्स जो हैं वो जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए।
2: आपसे एक चीज शेयर करूंगा, उनका काम बहुत अच्छा रहा है
1: जी,
2: सभी जो हमारे शिक्षक टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं
1: जी,
2: बहुत अच्छा काम हमारे पिछले सेंससेस में हुआ है। और चूंकि एक तो उन्हें अपने एरिया का आइडिया भी होता है
1: जी,
2: तो वो भी फैसिलिटेट होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे इस बार हम वैकेशन के टाइम पे कर रहे हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी भी है
1: जी,
2: और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने
1: जी।
2: बाकी डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी से
1: जी। तो जो भी शिक्षक सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने एरिया में आप सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने एरिया को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है जी। तो इसी बात पर अजय जी, कौन सा एक गाना आप अगला हमें सुनवा रहे हैं?
2: साथी हाथ बढ़ाना
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना है और मुझे लगता है कि हमारे इस काम के लिए सभी साथियों का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। सभी एक दूसरे का साथ देंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा।

0: तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की। हमारे साथ कार्यक्रम में श्री अजय गर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आप हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में। और हमने अभी तक जाना कि जनगणना जो है ये क्यों जरूरी है, हमें अपनी ओर से क्या सहयोग करना है और कैसे सरकार जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया इसके लिए अपना रही है, बहुत डिटेल में तैयारी की गई है ताकि हमारी सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और बदले में हमें सुविधाएं मिले और साथ ही ऐसे फैसले लिए जा सके जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी हैं। अब यहाँ पर मैं जितेंद्र जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हमें फर्स्ट फेज में अपनी जानकारी देनी है उसके लिए जो ऐप है या वेबसाइट है कैसे करना है उसके बारे में आप हमें बताएं।
1: जी, ये पहला सेंसस है जहाँ पे सेल्फ इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस हुआ है।
0: जी,
1: इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था। और ये जो जानकारी देने का जो URL जो पोर्टल है वो sec.census.gov.in, इसमें आप जाके
0: एक बार दोहरा दीजिए।
1: जी, SE फॉर सेल्फ एनुमरेशन डॉट सेंसस
0: जी
1: डॉट जीओवी डॉट इन
0: जी,
1: इस पोर्टल में जाके आप अपने मोबाइल नंबर, घर का कोई भी सदस्य का मोबाइल नंबर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
0: जी,
1: उसके बाद अपने पसंदीदा भाषा भी चुन सकते हैं। और उसके बाद आप अपने जो जानकारी जो है
0: जी,
1: जो हमारे पहला चरण में जितने भी 30 थे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप जाके अपने पसंदीदा भाषा में पढ़ के उसको आप अपना जवाब दे सकते हो।
0: जी,
1: और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक बार आपने भाषा को चयन करने के बाद अब आगे जाके उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर हिंदी अगर चुना है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसके पूरे जो आने वाले जो सवाल जो रहेंगे वो हिंदी में ही होंगे। और अगर किसी ने अंग्रेज अगर या तो इंग्लिश अगर उसने चुना है तो आने वाले सभी सवाल उसको इंग्लिश में ही मिलेगा।
0: जी,
1: तो जब भी अपना भाषा को वो चयन करे वो थोड़ा ध्यान से करे, क्योंकि आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकते हैं वो। और ये सेल्फ एनुमरेशन का जो अभी टाइमलाइन जो है हमारे MCD एरियाज के लिए 1 मई से लेके 15 मई, 15 दिन के अंदर आप अपना जानकारी अगर चाहेंगे तो इसी पोर्टल में जाके दे सकते हैं। और जैसे सर ने भी बताए थे कि एक बार आपने जानकारी आप इस पोर्टल में जाके देने के बाद 11 डिजिट का एक ऐसी ID जनरेट होगी। और इस ID को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। जब आपके घरों में एनुमरेटर विजिट करेंगे तो तब उनको आप ये ID दीजिएगा, ताकि इस ID के द्वारा वो आपका दिया हुआ जानकारी को वो फेच कर सकते हैं HLO ऐप में।
0: जी,
1: ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप जो है एक डिजिटल एक ऐप है जिसके द्वारा पूरे जानकारी इसी सेंसस में इकट्ठा होने वाला है।
0: HLO ऐप
1: हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप।
0: जी, और क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है अगर कोई समझना चाहे इस प्रक्रिया को?
1: जी, इस बार सेंसस में जो हेल्पलाइन नंबर जो रखा गया है वो है 1855। तो अगर कोई दिल्ली के रहने वाले कोई व्यक्ति या तो कोई भी सिटीजन अगर यहाँ पे से रहने वाले कोई भी पर्सन अगर इस नंबर पे फोन करेंगे सेंसस को लेके अगर

0: कोई उनके मन में कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पर फोन करेंगे, तो हमारे जो भी कंसर्न जो पर्सन है इसी लाइन को जो हैंडल करते हैं वो उनको वो हेल्प करेंगे, वो सहायता करेंगे
1: जी जी, उन्हें समझा भी सकते हैं कि कैसे एंटर करनी है डिटेल्स जी। और अजय जी, अब आपसे ये सवाल कि सच में जो लोग मुसाफिर हैं, ना घर है ना ठिकाना है, होमलेस लोग हैं जो जैसे बेगर्स भी हैं या कुछ उस तरह का काम करते हैं, फेरी वाले होते हैं कई लोग, या कोई उस तरह की स्थिति है, तो वो कैसे अपने आप को दर्ज करें, उन्हें क्या जानकारी देनी है?
2: जो होमलेस हैं तो होमलेस का जो उनका मकान सूचीकरण का तो नहीं होता है
1: जी,
2: जो दूसरा फेज होता है जिसको हम पॉपुलेशन एनुमरेशन कहते हैं, उस समय उनकी गणना होती है। तो उसमें एक दिन हमारा फिक्स होता है, अक्सर 28 फरवरी होता है, 28 फरवरी की रात को
1: जी।
2: तो हमारे जितने एनुमरेटर हैं पूरे, जहां पर भी इन लोगों का हमारे पास, पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं कि अधिकतर इन लोगों का यहाँ रहने का है, और फिर उनका वो डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं
1: जी।
2: इस तरीके से
1: मतलब पे वो जहाँ भी
2: जहाँ पर भी वहीं पर फुटपाथ पे जाते हैं हमारे लोग, पहले मैपिंग कर लेते हैं हम लोग
1: जी,
2: यहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो फिर 28 तारीख की रात को शाम को वहाँ पर जाके सब लोग डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं होमलेस की।
1: तो अजय जी, आपसे बातचीत के माध्यम से और जितेंद्र जी ने जो बताया, हमने समझा कि सेंसस जो है वो कितनी जरूरी चीज है, और ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसमें हमारा योगदान यही है कि हम अपने बारे में सही जानकारी दें, और जो भी हमारे घर पर आ रहे हैं वो एक विश्वसनीय पात्र हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अपना डेटा दे सकते हैं, और ये डेटा पूरी तरह गोपनीय भी है, और हमसे कुछ ऐसी जानकारी नहीं पूछी जा रही है जिससे बाद में हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो इतना भरोसा जो है वो रखना है जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब घरों में आएंगे, एक तरह का सर्वे ये हो रहा है, ऐसे में जो सवाल वो हमसे पूछेंगे, आम लोगों को जो जवाब देना है उन सवालों का, क्या पहले से वो पता कर सकते हैं कि कौन से सवाल हैं, और इसके अलावा कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो मना कर सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल, जो सेंसस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले से ही गैजेट में नोटिफाई होती है
1: जी।
0: तो जैसे अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए कुल 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा
1: जी,
0: ये क्वेश्चन का सूची ऑलरेडी ये गैजेट में नोटिफाई हो चुकी है, और HLO स्टार्ट होने से पहले भी ये अपने न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हो, कई बार न्यूज़पेपर में भी ये आती है ये
1: जी।
0: तो ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी होती है, और पब्लिक अगर जानना चाहेंगे तो गैजेट नोटिफाई जो किया गया क्वेश्चंस को भी वो अपने तरीके से, जैसे इंटरनेट से भी वो लोग देख सकते हैं
1: जी।
0: और हर एक चीज पब्लिक में ही है, पब्लिक डोमेन में ही है, तो उनको भी सब कुछ पता रहता है शुरू से ही कि जो एनुमरेटर उनके घर में विजिट करेंगे तो वो कौन से सवाल पूछने वाले हैं, तो इसमें कहीं मिसयूज ऑफ उनका जो पावर आप या तो पोजीशन का, यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं उठता है
1: जी। तो सवाल पहले से हमें पता होता है और उनके सही जवाब देने हैं। घरों में जब हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांगजन हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, या न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको नहीं गिना जाता है, तो क्या इनका भी बताना इनके बारे में जरूरी है?
0: जी देखिए, सेंसस में चाहे वो कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, चाहे कोई भी एज का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी दिव्यांग या तो और कोई क्यों ना हो, हम सभी को गिनेंगे
1: जी।
0: और जैसे बताया गया है कि ये नॉर्मली रिसाइडिंग, चाहे कोई भी एज का हो, चाहे कोई भी जेंडर का हो, हम उनको गिनेंगे। और इंडिया में ये हमेशा ये देखा गया है, जो एल्डरली होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं
1: जी,
0: मे बी कुछ दिनों के वो है, और या तो दिव्यांग, तो इनको हम जनरली छोड़ देते हैं। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आपके घरों में एनुमरेटर आए और आपको ये पूछे कि आपके घरों में नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर की संख्या क्या है
1: जी,
0: तो आप जरूर इन सबको इसमें इंक्लूड करें
1: जी,
0: क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही संख्या जो दिव्यांग हो या तो एल्डरली हो अगर नहीं पता चलेगा, तो उनके लिए जो जरूरत की जो योजनाएं जो है वो नहीं बन सकती है
1: जी,
0: क्योंकि वो एक स्पेशल नीड के कैटेगरी के लोग हैं, और आप दूसरी भाषा में कैसे, वो सबसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के
1: जी।
0: एल्डरली के लिए उनके जेरियाट्रिक केयर की जरूरत होती है, डिजेबल पीपल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है
1: जी,
0: और कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। तो ये एकमात्र के जरिया है जिसके द्वारा हम अपने घरों में जो रहने वाले ऐसे कैटेगरी के लोगों को बताएं, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए भी सही योजनाएं प्रोग्राम बना सकती है
1: जी। एक

0: धारणा रहती है, जब जैसे मतदाता पहचान पत्र होता है तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है या जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं वो अपने मूल स्थान पर ही मतदान करना चाहते हैं, तो मतदाता पहचान पत्र में एड्रेस चेंज नहीं करते, और जब कभी गिनती होती है तो मूल स्थान पर ही करवाते हैं। लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: अलग है।
0: आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर अपने आप को काउंट कर सकते हैं। जी,
1: जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग में हमेशा जो टेम्पररी ऑप्शन लोगों को भी गिना जाएगा।
0: जी,
1: ये जरूरी नहीं कि जब एनुमरेटर घरों में जाए जितने नॉर्मली रिसाइडिंग के लोग सबके सब अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता सभी केसेस में।
0: जी,
1: तो अगर कोई टेम्पररी एब्सेंट है, चाहे वो काम के लिए बाहर गए हैं या तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, कुछ दिनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ मैं, और या तो मैं भी रिश्तेदारों में चले गए हैं, ऐसे लोगों को भी जो टेम्पररी एब्सेंट है बट वो दे आर द नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड, तो उनको भी आप इसमें गिनेंगे
0: उनको।
1: और कोई अगर गेस्ट है जो आपके घरों में मे भी कुछ दिन के लिए आए हैं और मे भी कुछ दिनों के बाद फिर से वापस चले जाएंगे अपने जहां से आए हैं, तो उनको आप एक्सक्लूड करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम दिल्ली में ये जानना चाह रहे हैं कि सेंसस के दौरान, और या तो आप कह सकते हैं जिस तारीख को ये डेटा पब्लिश होगी जो कि 1 मार्च 2027, तो उस तारीख में दिल्ली में कितने लोग नॉर्मली रह रहे हैं, ताकि इस नंबर के हिसाब से जो भी पॉलिसी जो भी प्रोग्राम बननी है वो बनेगी।
0: जी, आपने दिल्ली की बात की और जनगणना की जो तारीख है वो भी हमें बताई। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमें कुछ और राज्यों के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल, देखिए जैसे हाउस होस्टिंग ऑपरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा ये समय सीमा दे रखा है कि अप्रैल से लेकर सेप्टेम्बर इन महीनों में कोई 30 दिन में आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दिल्ली के लिए जैसे एमसीडी एरियाज के लिए अभी ये 16 मई से लेके, मतलब जस्ट हमारे सेल्फ एनिमेशन खत्म होती है 15 मई, 1 मई से लेके 15 मई हमारे सेल्फ एनिमेशन होगी, 16 मई से लेके 14 जून तक हमारे HLO होगी MCD एरियाज में।
0: जी,
1: तो इस तरीके का बाकी स्टेट भी, बाकी यूनियन टेरिटरी भी ऐसे अपना टाइमलाइन भी पहले से ही वो नोटिफाई कर रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपका पंजाब जैसे स्टेट में अभी 30 अप्रैल से लेके 14 मई ये उनका सेल्फ एनिमेशन का पीरियड है।
0: जी,
1: और उसके बाद 15 मई से लेके 13 जून उनका HLO का टाइम है। और आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे 7 मई से लेके 21 मई तक उनका सेल्फ एनुमरेशन है, और 22 मई से लेके 20 जून उनका HLO का पीरियड है।
0: जी,
1: हरियाणा का सेल्फ एनुमरेशन का जो पीरियड है वो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल और 1 मई से लेके 30 मई उनका HLO का पीरियड है।
0: जी,
1: तो ऐसे स्टेट अपने अपने सेल्फ एनुमरेशन और HLO का पीरियड को भी वो नोटिफाई करते हैं।
0: जी,
1: तो पब्लिक को भी पता रहता है कि इसी टाइम में ही एनुमरेटर आएंगे, उसके बाद में भी कोई आएगा तभी उनको हमें जानकारी नहीं देनी है।
0: जी,
1: तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर है कि कौन आएगा और उनको अगर पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखनी है, जैसे सर ने बताया उनका आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए।
0: जी,
1: और टाइमलाइन भी फिक्स है, क्या सवाल पूछा जाएगा वो भी फिक्स है।
0: जी,
1: और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है चाहे कोई भी हालत में हो।
0: जी,
1: आप जो कहेंगे वो उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियरली है, तो इसलिए पब्लिक को पूरे दिल से, मतलब तहे दिल से उनको यहाँ पे सपोर्ट करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए, ताकि सेंसस सही ढंग से हो पाए।
2: जी, चाहो तो दिल्ली और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी टाइमलाइन फिर से बता दीजिए।
1: जी सर, दिल्ली के लिए अभी जो MCD एरियाज जो है इसमें कुल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं न्यू दिल्ली को छोड़ के, तो यहाँ पे अभी सेल्फ एनुमरेशन जो होगी वो 1 मई से लेके 15 मई तक, और उसके बाद ही HLO होगी जिसका टाइमलाइन है 16 मई से लेके 14 जून।
0: जी,
1: और राजस्थान का भी यही टाइमलाइन है, मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक सेल्फ एनुमरेशन होगी, 16 मई से लेके 14 जून तक HLO होगी। उत्तर प्रदेश का जो SC जो सेल्फ एनुमरेशन का जो टाइमलाइन है वो 7 मई से लेके 21 मई एंड 22 मई से लेके 20 जून तक HLO होगी।
0: जी,
1: हरियाणा का 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल सेल्फ एनुमरेशन होगी, 1 मई से लेके 30 मई तक HLO होगी। तो HLO हर जगह 30 दिन का ये फिक्स है ये टाइमलाइन।
2: HLO का मतलब है जहाँ पे एनुमरेटर घर घर जाएंगे। जी,
0: जी, जी। तो चलते चलते कौन सा गीत हम सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को जितेंद्र जी?
1: चलते चलते मेरे गीत याद रखना।
0: वाह, तो कार्यक्रम के समापन पर बहुत अच्छा सा गाना आपने चुना है, चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: अजय जी, चलते चलते हमारे माध्यम से आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील करना चाहता हूँ।
0: जी, तो बहुत बड़ी चुनौती ये सामने है, बहुत बड़ा काम है, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी जो दोस्त हैं, श्रोता मित्र हैं, वो समझ गए होंगे कि कितने लंबी प्रक्रिया है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो हमें भी अपनी ओर से सहयोग करना है। और जैसा अजय जी ने कहा कि सहयोग की अपील जो है वो विभाग हम सभी से कर रहा है, सही जानकारी दें, समय से जानकारी दें, सतर्क भी रहें, लेकिन साथ ही जो परस्पर भरोसा है वो बनाकर रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है जनगणना की, ये कहीं ना कहीं दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ में है। इसके लक्ष्य यही है कि हमारा लाभ हो सके, हमें फायदा पहुंचाया जा सके। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको कहती हूँ, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जनगणना के विषय में बहुत विस्तार से ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आभार आप।
0: जी, डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरी प्रक्रिया आपने हमें समझाई, और अब हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट है, क्या प्रक्रिया है, क्या तारीख है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जानकारी आपने हमारी बढ़ाई है, उसके लिए आपके आभारी हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ, मैं नीलम अलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिल

0: तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 12:05 हो रहे हैं एंड हेलो मुंबई, हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है ना, या फिर एसी की आवाज में मेरी आवाज दब गई? वेल, बाहर देखा आपने, आज धूप ऐसी है जैसे सूरज ने पर्सनली तय कर लिया हो कि आज तो मैं ही रोस्ट करूंगा सबको। 33 डिग्री और दोपहर संडे की 12:05, यानी बेस्ट ये है कि कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, और यही परफेक्ट है अनलेस आप मेरी तरह काम पर आए हुए हैं। वेल, आप सभी का वेलकम है FM रेनबो 107.1 पर विथ मी आरजे भावना, जहां आपको पता होगा कि म्यूजिक कैफे हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है। एंड आज के मेन्यू में है धीमे गाने, यानी स्लो सॉन्ग्स, और लेजी आफ्टरनून, यानी आलसी दोपहर। भाई संडे है तो फुल इंजॉय करने वाले हैं हम, लेकिन उससे पहले आज कोई प्रवचन नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि बस मुझे आपसे बात करनी है। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो बताइए आखिर आप कर क्या रहे हैं इस संडे, इस गर्मी में आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? सीलिंग फैन देख रहे हैं, या फिर तकिए पर पड़े पड़े फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, या पसीने से तर बतर होकर सोच रहे हैं यार ये एसी क्यों नहीं ले लिया मैंने, क्यों इतनी गर्मी है, बारिश कब आएगी? वेल, जो भी हो, इस एक घंटे के लिए बस यहीं रहे, क्योंकि बाहर धूप जला देगी, लेकिन इस कैफे में, यानी कि यहाँ सिर्फ म्यूजिक होने वाला है। और आज जो प्लेलिस्ट लाई हूँ मैं, वो आपके इस आफ्टरनून को थोड़ा और चिल वाइब दे देगी। वेल, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सॉन्ग, राहत फतेह अली खां की आवाज़ में।

और अंदर सब कुछ स्लो मोशन में. वेल, आई टेक माई वर्ड्स बैक. पुरानी हिंदी क्यों, आज तो हर कहीं ये फील आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि आप खुद अपनी फिल्म के हीरो हैं. आप तो खुद ही क्रिएट कर सकते हैं सीन, बस सोच के देखो. आज बस सफर करते हैं. वेल, आप दोनों सफर यूज कर सकते हैं, सैर सपाटे वाला भी और सफर वाला भी. वेल, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगी मेरा जवाब है ऑप्शन डी. FM रेनबो पर आंखें बंद और ये गाने सुनते सुनते यही सोचना कि बारिश कब आएगी. वेल, इसी सवाल में जो दूसरा सवाल ये था कि आपको क्या लगता है, अगर एसी ना हो तो बिना एसी के आप कौन सी वो चीजें कर सकते हैं जिससे आपको गर्मी में राहत मिल सकती है. दैट्स अनदर क्वेश्चन. तो आप ये सवालों के जवाब कहाँ भेजेंगे? 8657661071, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर. तो आपके जवाब जो भी है वो हमें भेजिए और बताइए आखिर आपका संडे कैसा चल रहा है. वेल, आप सोच रहे होंगे कि मैडम आप तो एसी में बैठे बैठे शो कर रही हैं तो आपको कैसे पता. वेल, इस शो के बाद मुझे भी जाना है बाहर और तब मैं यही सोचूंगी कि उफ ये गर्मी, बारिश कब आएगी. लेकिन आई कुड रिलेट टू यू, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, क्या पता आपके नुस्खे मैं ही आजमा लूँ. सो प्लीज़ हेल्प मी और मैसेज कीजिए मुझे, यार वेट कर रही हूँ आपका. व्हाट्सअप कहाँ करना है आपको बताइए. विद दैट, अगला गाना आपको सुनाऊंगी कुछ ही देर में. नेक्स्ट, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में परिणीता फिल्म से.

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

ये कंप्लेन आ चुकी है मेरे पास. दैट्स राइट, आप लोगों से मैं काफी दिनों बाद मिल रही हूँ, तो आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मैडम आप गुस्सा तो नहीं हो गए, आप कितने दिनों के बाद आ रहे? जी बिल्कुल नहीं, हम भी थोड़ा बस छुट्टी पर चले गए थे, क्योंकि डॉक्टर अंजू हमारे साथ जुड़ी हैं, कहती हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियरिंग यू, कहाँ थे, आई मिस्ड यू. बस ये जिस खुशी के साथ, जितने एक्साइटमेंट के साथ आपने ये मैसेज भेजा है ना, बस उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ. आई मिस्ड एवरी वन ऑफ यू. मैं सच कह रही हूँ, आप सभी के मैसेजेस पढ़ते ही जो स्माइल आ रही है मेरे फेस पर, दैट सेज़ अ लॉट कि आप लोग कितना बड़ा हिस्सा है मेरी जिंदगी का. सो ऑफकोर्स आई मिस्ड एवरी वन ऑफ यू. आप सभी मुझे याद हैं और हमेशा मैं याद करती थी आपके मैसेजेस जो आते थे. और पंकज महोर जी का भी कॉल आया था और वो तो ये मान बैठे कि मैं

गुस्सा हो गई हूँ। जी बिल्कुल नहीं, अपनों से कोई गुस्सा होता है, रूठते हैं, मनाते हैं, गुस्सा थोड़ी होते हैं। वेल, दिग्दर्शन जी और कविता जी का मैसेज भी आया है हमारे पास। वो कहते हैं, हमारे यहाँ 2 दिन पहले 45 डिग्री था मौसम और अब लगभग 32 से 35 डिग्री का टेम्परेचर हो चला है। बारिश वाली पुरवाई हवा चल रही है। वेल, यहाँ मुंबई में तापमान तो वैसे 33 डिग्री सेल्सियस है। रजनीकांत पाटिल वाधवन जी हमें मैसेज कर चुके हैं, गुड आफ्टरनून आप सभी को। फिरोज सिगनपुरिया, संदीप कुमार जी का बड़ा प्यारा मैसेज आया है, कहते हैं, पहाड़ पेड़ हो, बड़े बड़े लकड़ी का घर हो, चाय का कप, ये बिल्कुल आप मेरी तरह हैं, कोई भी मौसम हो चाय का कप तो होना चाहिए। रेडियो साथ में और पुराने पुराने गाने, लकड़ी की खाट हो और क्या हो, कुछ नहीं चाहिए। वेल, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, पिंगा वाला चौक, कुराया जालंधर से, ये बिल्कुल आई अग्री टू दिस। इनफैक्ट आपको पता है, इस चीज के साथ आई बिलीव इसमें ये बहुत बढ़िया जाने वाला है। बस ये तो और मजा आ जाएगा। वेल, आप सभी के मैसेजेस मिले हैं एंड ऑफकोर्स मैंने सभी के मैसेजेस पढ़े भी हैं, बट लेट मी टेल यू, ये जो गाना आपने सुना, इस गाने के साथ ये जो दिन है ना, ये भी बेस्ट है, क्योंकि रविवार की अगर आफ्टरनून की बात की जाए दोपहर की, तो ये एक अलग ही जादू है। मंडे की एंजाइटी अभी आई नहीं, सैटरडे की थकान अभी गई नहीं, और बाहर इतनी धूप है कि घर से निकलने का कोई सवाल ही नहीं। यानी आज का दिन सिर्फ आपका है, कोई प्लान नहीं, कोई टू डू लिस्ट नहीं, बस होना है। और ऑनेस्टली, इस चिलचिलाती धूप में ये एक आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि इसी बहाने आप घर पर हैं, इसी बहाने ये म्यूजिक सुन रहे हैं, और इसी बहाने हम मिले हैं।

वेल, आप सभी के मैसेजेस मिल रहे हैं और आप सभी की बातें भी मैं सुन रही हूँ. लेट मी टेल यू, हमारे साथ वैदेही बाबा दादर से, अजय साखरे इंदौर से, प्रमोद चिंचोलकर जी, दीपा पालकर जी एंड हितेंद्र दास विजेंद्र घाटोल अकोला से जुड़े हुए हैं एंड आप सभी के मैसेजेस भी मिल रहे हैं. वैदेही जी हमारे साथ 12 o'clock से जुड़ी हैं एंड वेल, इसी के साथ लेट मी टेल यू, हमें बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है. वो कहते हैं कि अकोला में, प्रमोद जी कह रहे हैं कि अकोला में टेम्परेचर 42 degrees है और मुंबई में वैसे 33 degrees है. आप कौन से शहर से हमें सुन रहे हैं और वहाँ पर टेम्परेचर क्या है ये हमें ज़रूर बताइए. और इनफैक्ट प्रमोद जी तो बड़े ही प्यारे फ्रूट्स के भी पिक्चर्स भेज रहे हैं. वेल, इस चीज़ के साथ आप जब टेम्परेचर बता रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रेशन ज़रूरी है, पानी ज़रूर पीजिए, जितना हो सके नींबू पानी पीजिए, हाइड्रेट रखिए खुद को और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप धूप में ज़्यादा बाहर ना रहें. अगर काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो अपने साथ एक पानी के लिए एक थर्मस ज़रूर लेकर चलें साथ में. वेल, विद दैट लेट मी ऑल्सो टेल यू, संडे एक्चुअली हमारी होती थी, जब मुझे याद है कि मैं छोटी थी तब हमारे घर पर दूरदर्शन सेटमैक्स ये चलता रहता था और मम्मी खाना बनाती थी. उस खुशबू के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बनता था क्योंकि ऑफकोर्स समर वेकेशन चालू हो जाते थे, हम कजन्स एक साथ बैठे रहते थे, पूरा परिवार, कोई सो रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, एक फैमिली एकजुट हो जाती थी और हर कोई बस एक ही कूलर के आगे बैठा होता था कि किसे सबसे ज़्यादा उस कूलर की हवा आए. वेल, आपके मैसेजेस आए. इनफैक्ट ये कूलर की जो समस्या नहीं, इनफैक्ट समाधान, ये हमें दीपा जी ने भी कही है कि एसी तो नहीं लेकिन हाँ, ठंडा फालूदा विद आइसक्रीम खाकर रेडियो पर गाने सुनकर ठंडक पाती हैं वो. वेल, ये भी आइडिया काफ़ी अच्छा है. गर्मी तो बहाना है, आप जितनी बार कहिए उतनी बार आपको आइसक्रीम मिल ही जानी है. ये तो बेस्ट पार्ट होती है गर्मियों की, है कि नहीं? वेल, विद दैट अगला गाना सुनिए उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में. मैं मिलती हूँ गाने के उस पार.

उम्मीद तो यही है कि बरसेगा सावन, कब बरसेगा ये सावन, क्योंकि आप सभी के मैसेजेस मिल चुके हैं, बिकॉज मेरे जाने का वक्त है। ठीक 1 बजे आप सुनेंगे मराठी में दोपहरचा बातमियां यानी समाचार, और ठीक 1:05 पर मूवी माइलस्टोन, जहां धूल का फूल ये प्रोग्राम आप सुनेंगे। पद्मश्री भावना सुमैया प्रेजेंट करेंगी आपको फिल्मों की कुछ अनसुनी कहानियां बताएंगी। एंड विद दैट लेट मी टेल यू, हमारे साथ हमारे नए लिसनर आजाद अंसारी जुड़े हैं सऊदी अरबिया से, जो कह रहे हैं कि वहां टेम्परेचर 34 degrees है। एंड वी ऑल्सो हैव अंजू अंधेरी ईस्ट से, और एक और श्रोता है मंगेश जोशी रोहा रायगढ़ से, जहां टेम्परेचर 33 है। वेल 30 to 40, इनफैक्ट 41 degrees भी मुझे किसी ने एक मैसेज किया है, 41 degrees टेम्परेचर है अमरावती तरफ। तो टेम्परेचर अपना काम करने वाला है, आप अपना काम कीजिए। मैं तो कहती हूँ अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिए, जहाँ जितना हो सके लोगों को अगर आप देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं तो उन्हें ऑफ़र कीजिए। देखिए काइंडनेस फ्री है तो इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कोई इंसान गर्मी में तपती धूप में काम कर रहा है तो पानी पूछिए, और क्या पता इसी बहाने, आइस ब्रेक कहते हैं इसे लोग, पर मैं तो कहती हूँ वाटर ब्रेक हो जाएगा, और इसी बहाने आपको एक नया दोस्त मिल जाएगा। विद दैट चलिए मैं लेती हूँ विदा, लेकिन आप सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना, मैं थी आपके साथ म्यूजिक कैफे में। मिलूंगी आपको दोबारा नेक्स्ट संडे, बट विद दैट बने रहिए क्योंकि मूवी माइलस्टोन अभी बाकी है मेरे दोस्त।

1FM रेनबो पेश प्रोग्राम मूवी माइलस्टोन्स विद भावना सोमाया। आज की फिल्म बीआर चोपड़ा निर्मित, यश चोपड़ा दिग्दर्शित, राजेंद्र कुमार एवं माला सिन्हा अभिनीत धूल का फूल।

0: प्यार का।
1: नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और मूवी माइलस्टोन में आप सबका स्वागत है। एंड ऑफ फिफ्टीज वैसे तो बहुत सारी फिल्में बनी और बहुत कामयाब भी हुई, मगर मैंने जो फिल्म को माइलस्टोन में इंक्लूड किया है साल 1959 की, वो ना कामयाब हुई ना उसका कभी ज़्यादा जिक्र भी होता है, मगर उसे इंक्लूड करने की मेरी एक खास वजह है, क्योंकि इस फिल्म ने एक लेजेंडरी फिल्म मेकर को लॉन्च किया, यश चोपड़ा, जिन्होंने आगे चलकर एक लेजेंडरी बैनर को लॉन्च किया, यशराज फिल्म्स। कहने का मतलब ये है कि सबसे सक्सेसफुल आदमी भी शुरुआत छोटे कदमों से होती है, नाकामयाबी से होती है, और जो सीख हमें मिलती है कि हमें हमारे छोटे कदम या नाकामयाबी से हार नहीं माननी है। यश चोपड़ा बी आर चोपड़ा साहब के सबसे छोटे भाई हैं, वो लोग कुल मिलाकर 8 भाई हैं, और आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद, जब बी आर चोपड़ा पंजाब से बम्बई आए तो पहले तो वो फिल्म क्रिटिक बने, उसके बाद उन्होंने फिल्म स्क्रीन पर लिखना शुरू किया, और बाद में वो डायरेक्टर बने और फिर प्रोड्यूसर बने और फिर अपना बैनर बनाया। जैसे वो धीरे धीरे सेटल होने लगे थे तो उन्होंने पंजाब से अपने दूसरे भाइयों को भी बुलाना शुरू कर दिया बम्बई, और हर भाई को अलग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दी और अपनी टीम में शामिल कर दिया। यश चोपड़ा इज द यंगेस्ट ब्रदर, इसलिए बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क है, बल्कि यश चोपड़ा इज जस्ट अ फ्यू ईयर्स ओल्डर देन बी आर चोपड़ा सन रवि चोपड़ा। यश चोपड़ा ने जब अपनी कॉलेज खत्म कर ली तो वो भी अपने बाकी भाइयों की तरह बम्बई आ गए। अब तक सारे 6 भाई अपने अपने डिपार्टमेंट में नुपुर हो गए थे और इंडिपेंडेंटली रहते थे। यश चोपड़ा क्योंकि नए नए आए थे, वो बी आर चोपड़ा के बंगले पर रहते थे और बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस में काम करते थे। प्रोडक्शन का काम वो धीरे धीरे सीख रहे थे और बहुत जल्द ही सीख रहे थे, और बहुत जल्द बी आर चोपड़ा ने यश चोपड़ा अपने छोटे भाई को अपना फर्स्ट एडी बना दिया। वो उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश थे और समय आने पर ही डिसाइडेड टू गिव अ ब्रेक टू यश चोपड़ा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम हिज बैनर। फिल्म का नाम धूल का फूल, और फिल्म की कास्ट काफ़ी इम्प्रेसिव, अशोक कुमार, माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार और नंदा जी। फिल्म के राइटर तब के लीडिंग स्क्रीन प्ले राइटर पंडित मुखराम शर्मा। पंडित मुखराम शर्मा की जो खास बात थी कि वो अपने मुद्दे और अपनी डेडलाइन को लेकर बहुत ही ईमानदार थे, और उनकी एक जो स्पेशलिटी थी वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कहानी को वो सुलझा सकते थे। यानी जब भी कोई फिल्म मेकर अपनी कहानी में उलझ जाता था और उनको समझ में नहीं आता था कि अभी किस तरह से इसमें रास्ता ढूंढे, तो वो मुखराम शर्मा जी के पास आते थे और 3 दिन के बाद मुखराम शर्मा उनको इसका इलाज दे देते थे। उस समय उनको जीनियस कहा जाता था, आज के दौर में इसे स्क्रिप्ट डॉक्टर कहा जाता है। धूल का फूल बहुत ही इमोशनल कहानी थी। माला सिन्हा, मीना और महेश, राजेंद्र कुमार लॉ स्टूडेंट्स हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और माला सिन्हा बिकम्स प्रेग्नेंट। माला सिन्हा महेश को ये बात बताती है और महेश उनसे शादी करने को इनकार कर देता है क्योंकि उनकी मंगनी नंदा से तय हो चुकी है। माला सिन्हा समाज के डर से अपना बच्चा अनाथालय में छोड़ आती है और वो अपने बॉस अशोक कुमार से शादी कर लेती है। ये बच्चा अब्दुल रशीद, प्लेड बाय मनमोहन कृष्ण, जिसकी कोई औलाद नहीं, अपने घर लाते हैं और उसे अपने तरीके से पाल पोस कर प्यार से बड़ा करते हैं। 60 के दशक में मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ये बहुत कॉमन डायलॉग था, मगर इसकी शुरुआत हुई थी धूल का फूल से। तो ये सब्जेक्ट अपने समय के लिए बहुत ही पायनियरिंग था और इसमें बहुत सारे मुद्दे को एड्रेस किया था जो अब तक किसी फिल्म ने एड्रेस नहीं किया था, जैसे इलेजिटिमेट चाइल्ड, अनवेड मदर एंड कम्युनल हार्मनी। आपको याद होगा इस फिल्म का एक बहुत खूबसूरत गाना, जो मैं मानती हूँ कि कम्युनल पीस के लिए एक एंथम है, जो मनमोहन कृष्ण पर दर्शाया गया था, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कितना खूबसूरत गाना है और इतने दशकों बाद भी हमारे देश और हमारी परिस्थितियों पर लागू होता है।

यश चोपड़ा साहब के फेवरेट शायर साहिर लुधियानवी साहब हैं। उनकी पुरानी ऑफिस बल्कि नई ऑफिस में भी उनकी कुर्सी के पीछे की दीवार पर एक लंबी साहिर लुधियानवी साहब की तस्वीर लटकी होती थी और मैं जब भी यश जी से मिली हूँ तब कहीं ना कहीं उनकी कॉन्वर्सेशन में हमेशा साहिर साहब का जिक्र आ ही जाता था। धूल का फूल के 8 गाने साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे और सारे गाने तो बहुत मशहूर नहीं हुए थे, मुझे तो बहुत कम याद है, मगर जो रोमांटिक गाने थे वो बड़े प्रभावशाली थे। एक था तू मेरे प्यार का फूल है लता जी की आवाज़ में, दूसरा लता जी और महेंद्र कपूर की ड्यूएट तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, बहुत रोमांटिक था इसका पिक्चराइजेशन भी। एक आशा भोसले और महेंद्र कपूर का ड्यूएट जो पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है, झुकती घटा गाती हवा सपने सजाए नन्हा सा मन मेरा मचल मचल जाए, इसमें एक बीट है, एक उल्लास है, एक उत्साह है जो जब भी बजता है ये गाना तो मेरा मूड बदल जाता है।

स्टोन्स विद भावना सोमाया, आज की फिल्म बीआर चोपड़ा निर्मित, यश चोपड़ा दिग्दर्शित, राजेंद्र कुमार एवं माला सिन्हा अभिनीत, धूल का फूल।

1FM रेनबो पेश प्रोग्राम मूवी माइलस्टोन्स विद भावना सोमाया। आज की फिल्म बीआर चोपड़ा निर्मित, यश चोपड़ा दिग्दर्शित, राजेंद्र कुमार एवं माला सिन्हा अभिनीत धूल का फूल।

एंटरटेनमेंट की दुनिया वैसे तो पैसे की दुनिया होती है, जहाँ सारे डिसीशंस और सारे रिश्ते पैसों पर अमल होते हैं। मगर एक अजीब तरीके से शो बिजनेस जज्बातों की भी दुनिया है। यहाँ जब रिश्ते बनते हैं तो बड़े गहरे रिश्ते बनते हैं और लंबे चलते हैं, और जब रिश्ते नहीं बनते तो जाहिर है कि वो टूट भी जाते हैं। बीआर बैनर का अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा सबके साथ एक बहुत पारिवारिक रिश्ता था और ये आखिर तक चला। उसी तरह से यश चोपड़ा साहब का मनमोहन कृष्ण और लता मंगेशकर के साथ एक

पारिवारिक रिश्ता था। मेरे ख्याल से लता मंगेशकर ने करीबन सभी यशराज फिल्म्स में गाने गाए हैं और एटलीस्ट ऑल यश चोपड़ा डायरेक्टेड फिल्म्स एंड द लास्ट वाज वीर ज़ारा। और जब यश चोपड़ा ने अपना स्टूडियो बनाया तब स्टूडियो में जो लॉबी है वहाँ एक पूरी दीवार पर लता मंगेशकर की पेंटिंग पेंट की गई है, पेंटिंग नहीं है, दीवार पर पेंट की गई है। वो इतना आदर करते थे लता जी का। धूल का फूल बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और जाहिर है इसका अफसोस रह गया यश चोपड़ा के दिल में। जब अवार्ड्स सेरेमनी आने लगी तो मनमोहन कृष्ण को सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, माला सिन्हा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और पंडित मुखराम शर्मा को राइटर का अवार्ड मिला। यश चोपड़ा को कोई अवार्ड नहीं मिला, मगर उनको इस बात का बुरा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत खुश थे कि एक उनके बड़े भाई साहब ने उनको इस फिल्म बनाने का अवसर दिया, दो कि उन्होंने फिल्म में कोई दखल अंदाजी नहीं की। द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, द चॉइस ऑफ द कास्ट, द चॉइस ऑफ द राइटर, सब कुछ जो यश चोपड़ा ने चाहा वही हुआ। हालांकि बी आर चोपड़ा ने उन्हें अगवा किया था कि यह सब्जेक्ट ऐसा है कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगा, फिर भी अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम ये फिल्म बना सकते हो। जब यश चोपड़ा फिल्म ना चलने का गम बहुत ज़्यादा हो जाता था तो वो अकेले निकल जाते थे वो स्टूडियो में जहाँ ये फिल्म शूट हुई थी, कारदार स्टूडियो, और बस वो कारदार स्टूडियो में जाते थे, वहाँ थोड़ा सा टहलते थे, थोड़ी देर बैठते थे और उनका ज़ख्म थोड़ा कम हो जाता था। उनका ये कहना है कि फिल्म भले ना चली मगर मेरी यादें उस फिल्म से, मुझे जो सीख मिली उस फिल्म से, वो इतनी बेहतरीन है कि मेरे अंदर ये ताकत थी कि मैं फिर से काम करना शुरू कर दूँ। यश चोपड़ा फिर से बी आर चोपड़ा की प्रोडक्शन में जुड़ गए और उनकी फिल्मों में उनको असिस्ट करने लगे। बी आर चोपड़ा उनके बड़े भाई थे और अपने छोटे भाई से बेपनाह मोहब्बत करते थे और वो जानते थे कि उनका छोटा भाई उदास है और उनके लिए कुछ ना कुछ सोच भी रहे थे। वो क्या सोच रहे थे उनके लिए? धूल का फूल बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और जाहिर है इसका अफसोस रह गया यश चोपड़ा के दिल में। जब अवार्ड्स सेरेमनी आने लगी तो मनमोहन कृष्ण को सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, माला सिन्हा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और पंडित मुखराम शर्मा को राइटर का अवार्ड मिला। जब यश चोपड़ा फिल्म ना चलने का गम बहुत ज़्यादा हो जाता था तो वो अकेले निकल जाते थे वो स्टूडियो में जहाँ ये फिल्म शूट हुई थी, कारदार स्टूडियो, और बस वो कारदार स्टूडियो में जाते थे, वहाँ थोड़ा सा टहलते थे, थोड़ी देर बैठते थे और उनका ज़ख्म थोड़ा कम हो जाता था। उनका ये कहना है कि फिल्म भले ना चली मगर मेरी यादें उस फिल्म से, मुझे जो सीख मिली उस फिल्म से, वो इतनी बेहतरीन है कि मेरे अंदर ये ताकत थी कि मैं फिर से काम करना शुरू कर दूँ। यश चोपड़ा फिर से बी आर चोपड़ा की प्रोडक्शन में जुड़ गए और उनकी फिल्मों में उनको असिस्ट करने लगे। बी आर चोपड़ा उनके बड़े भाई थे और अपने छोटे भाई से बेपनाह मोहब्बत करते थे और वो जानते थे कि उनका छोटा भाई उदास है और उनके लिए कुछ ना कुछ सोच भी रहे थे। वो क्या सोच रहे थे उनके लिए?

0: का।
1: बी आर चोपड़ा में एक जो अच्छी बात है और बेहतरीन बात है कि उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को हमेशा ब्रेक दिया, और ये सीख यश चोपड़ा जब प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने भी ये अपना ली। यश चोपड़ा ने भी अपने भाई साहब की तरह अपने जो असिस्टेंट्स थे सबको ब्रेक दिया। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप को जो भी अवसर मिलता है आप वही अवसर अपने असिस्टेंट्स को देते हो। बी आर चोपड़ा से अपने भाई का दुख छुपा नहीं था, वो उनको पूरी शिद्दत के साथ असिस्ट कर रहे थे अपनी फिल्मों में, और बी आर चोपड़ा ने ठान लिया था कि वो अपने भाई को एक दूसरा अवसर देंगे, एक और फिल्म बनाने के लिए अवसर देंगे। और इस बार भी उन्होंने यश चोपड़ा को अपनी कहानी, अपना सब्जेक्ट, अपना कास्ट चुनने का अवसर दिया। और एक बार फिर यश चोपड़ा ने एक इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट चुना, फिर से अनवेड मदर का, फिर से कम्युनिटी डिसहार्मनी का, कि फिर से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। फिल्म का नाम था धर्मपुत्र और साल था आई थिंक 61। इस बार यश चोपड़ा इस तरह से टूट गए कि लगता था कि इस दुख से उभर नहीं आएंगे, मगर जब फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, क्योंकि ये बी आर बैनर का फर्स्ट नेशनल अवार्ड था, तो सब बहुत खुश थे। और तब यश चोपड़ा को ये बात खाई जा रही थी कि दो फिल्म में नाकामयाब रही, दो फिल्मों में उन्होंने बड़े भाई साहब का नुकसान किया, अब बड़े भाई साहब तो उनको ब्रेक देंगे नहीं और वो किसी और से ब्रेक मांगेंगे नहीं, तो क्या होगा, क्या हुआ, क्या किया बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब के लिए, कौन सी फिल्म थी जिससे यश चोपड़ा की किस्मत बदल गई, ये बात आपको सुनने मिलेंगी मूवी माइलस्टोन के नए सीजन में। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 107.1।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम मूवी माइलस्टोन विद भावना सोमाया। आज की फिल्म बीआर चोपड़ा निर्मित, यश चोपड़ा दिग्दर्शित एवं माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार अभिनीत धूल का फूल। निर्मात्री वैशाली त्रिवेदी। सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 FM।

0: More details from a correspondent.
1: Light to moderate rainfall is being experienced in different parts of the state since this morning. Due to intermittent rain over the past 3 days, mercury in many areas has fallen below normal. According to the Met Department, Dehradun rainfall is likely to continue most parts of the state today and tomorrow. The department has also issued a warning of thunderstorms accompanied by strong winds during this period. An orange alert has been issued for hailstorm and heavy rainfall in Dehradun, Tehri, Haridwar, Pauri, Nainital, Champawat and Udham Singh Nagar district, while a yellow alert has been issued for other areas. According to the Met Department, this spell of rain may continue in the coming days, which would lead to a further drop in temperature. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
0: Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall today at isolated places over northeast India, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu and Puducherry. Places over Jammu and Kashmir, Ladakh, Chhattisgarh and coastal Andhra Pradesh are expected to experience thunderstorms and lightning today. Similar weather conditions also likely to prevail today over parts of Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Odisha, Kerala, Punjab and Madhya Pradesh. The weather agency further predicted heat wave conditions today in places over coastal Andhra Pradesh. According to IMD, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to witness hot and humid weather conditions till tomorrow. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Kolkata Knight Riders at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 3:30 today. Sunrisers Hyderabad are currently in third place, while Kolkata Knight Riders are positioned in eighth place. In another match, host Gujarat Titans will face Punjab Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Stage is set for counting of votes for 4 states' assemblies and 1 union territory tomorrow. All arrangement in place. Election Commission orders re-polling in all 285 polling stations of Falta Assembly constituents in West Bengal. Polling to take place on the 21st of this month. A massive fire claims 9 lives in Vivek Bihar area of Delhi. OPEC plus countries agree in principle to raise oil output targets next month amid ongoing West Asia conflict. World Press Freedom Day been observed today. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Kolkata Knight Riders today. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
3: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
2: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
4: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है।

0: मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कार्यकाल यानम और माहे में होगी।
0: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
2: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
3: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
6: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
7: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
8: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतना सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
1: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा

2027 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भिखावी कोड़ी न अरे वांगी न दौड़ का जोड़ी न काकड़ी भिखावी कोड़ी न गाजर नी मुड़ा दूधी दूध खुड़ा पावट्या।

0: यार काय मनाव दोस्ती लाया दोघे ही घन चक्कर जगा वेगळी दोस्ती ही जैसे घी में शक्कर
1: दोस्ती तुटाय जीना
0: एक

आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। शाम के 5:09 हो चुके हैं और संडे की शाम है, थोड़ी सी आलस भरी, थोड़ी सी सुकून वाली और थोड़ी सी चीज़ी, वो वाली चीज़ें नहीं, चीज़ वाली चीज़ी, सैंडविच के साथ जो चीज़ खाई जाती है, पिज्ज़ा के साथ जो खाई जाती है, क्योंकि आज का दिन होता है, आज का दिन होता है खुद के लिए।

ना कोई जल्दी, ना कोई टेंशन, बस अपनी पसंद की छोटी छोटी खुशियाँ। कभी गर्मा गर्म चाय और सैंडविच, कभी एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज्ज़ा, और कभी फैमिली आउटिंग सिर्फ स्ट्रीट फूड खाने के लिए निकल पड़ते हैं। और कभी कभी बस वो पल जब ज़िंदगी थोड़ी सी आसान लगने लगती है। आज की शाम में बात करेंगे उन छोटी छोटी खुशियों की। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, आप है मेरे यानी कि लक्ष्मी के साथ, दिल से दिल तक।

5:18 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं मेरे साथ लव योर जिंदगी। दोस्तों, बात कर रही हूँ उन छोटे छोटे पलों की जो बहुत बड़ी खुशियाँ लाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कोई बड़ी चीज़ होगी, लाइक बड़ी अचीवमेंट आएगी तो खुशी होगी और तब बड़ा सेलिब्रेशन हम करेंगे। लेकिन सच ये है कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में ही इतनी छोटी छोटी खुशियाँ बिखरी होती है जिन्हें हम नोटिस ही नहीं कर सकते। जैसे पूरे हफ्ते की भाग दौड़ के बाद संडे की ये धीमी शाम, जब घड़ी थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट लगती है, या फिर वो एहसास जब आप बिना किसी वजह के अपने किसी अपने को कॉल कर लेते हैं और बात बहुत लंबी हो जाती है, या फिर बस खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताना बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। असल में ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं वो हमें रीसेट करते हैं, हमें

रिमाइंड कराते हैं कि लाइफ सिर्फ भागने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है. ट्राई कीजिए कम से कम एक छोटी सी खुशी को कॉन्शियसली नोटिस करने की. और मुझे आप बताइए 8657-66107 पर कि आज सुबह से ऐसी कौन सी छोटी छोटी खुशियां हैं जो आपके चेहरे पर अभी भी मुस्कान ला रहे हैं. कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक.

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होय. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: लव यू जिंदगी. आप मेरे साथ सुन रहे हैं. 5:30 हो चुके हैं और बात कर रही हूँ छोटी छोटी खुशियों की. हमारे साथ हमारे जो लिसनर हैं जुड़ चुके हैं, शुभदा, पंकज मोहन, राजेंद्र परमार, फिरोज सिंगन पौरिया, वैदेही, प्रणव शिंदे और सारे दोस्त अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं. फिरोज सिंगन पौरिया बोल रहे हैं कि उनकी बेटी कैनेडा से आई है और वो -10 degrees एक्सपीरियंस करके आई है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी का एक्सपीरियंस कर रही है, तो यही बात उनको शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाती है. और शुभदा जी हैं, वो बहुत टाइम बाद एक रास्ते से फिर से ट्रैवल कर रही थी तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. सो यही छोटी छोटी खुशियां होती है. और एक और दिलचस्प बात हुई कि कल 12वीं का रिजल्ट आया था दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा. तो पंकज महोड़ वो कह रहे हैं कि कल उनकी बहन का 85% रिजल्ट आया तो घर में कल से ही खुशियों का माहौल है. वेल, यही छोटी छोटी खुशियां तो होती है जो हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में आगे फ्यूचर का मत सोचिए पर अभी जो हो रहा है उसके बारे में सोचिए. और भी दोस्तों ने उनकी खुशियाँ शेयर की है, बहुत छोटी छोटी बात करेंगे इन गानों के बाद. कीप लिसनिंग टू FM रेनबो.

0: प्रोसेस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: छोटी छोटी खुशियों की बात कर रही हूँ और मैं ये जो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसको क्लियर कर देती हूँ कि प्रणव शिंदे हैं, उनकी बहन का रिजल्ट आया है 85%, तो उनके घर में खुशियों का माहौल है. और पंकज महोद, उन्होंने तो बहुत बढ़िया लिखा था कि सुबह से ऐसा कोई काम किया नहीं है पर मैंने सबसे प्यार से बात की है, तो वही बात है जो मेरे चेहरे पे अभी तक मुस्कान ला रहा है. वेल, बहुत ही अच्छी बात है कि छोटी छोटी खुशियाँ किस तरह से आपको पूरे दिन ऐसे नेगेटिव नहीं पर पॉजिटिव रख सकती है. उस पर बात करेंगे इन गानों के बाद. कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक.

लव यू जिंदगी में, बस कुछ गाने मैं आपको सुनवा पाऊंगी. वेल, बात कर रही थी छोटी छोटी खुशियों की. हम अक्सर अपनी जिंदगी को फ्यूचर में जीते हैं. जब ये होगा तब खुश होंगे, जब वो मिलेगा तब रिलैक्स करेंगे. लेकिन इस प्रोसेस में हम आज का दिन, आज की छोटी छोटी खुशियाँ, वो क्वाइटली निकल जाती है. असल में छोटी खुशियाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं होती, ये हम हमारे अटेंशन पे डिपेंड करती है. अगर आप ध्यान दें तो वही रोज़ का रास्ता थोड़ा खूबसूरत लग सकता है, वही रूटीन बातचीत थोड़ी मीनिंगफुल हो सकती है, और वही आम सा लगने वाला दिन थोड़ा खास बन सकता है. साइकोलॉजी भी कहती है कि जब हम कॉन्शियसली छोटी पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी से बाहर आना शुरू कर देता है. मतलब खुश रहना कोई घटना नहीं है, वो एक छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है. तो आज की इस संडे की शाम को बस ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, आज के दिन की 3 छोटी खुशियाँ याद कीजिए और देखिए मूड खुद ब खुद बदलेगा और चेहरे पे क्या मुस्कान आती है. वैसे तो मुस्कान ये अगले गाने सुनकर भी आने वाली है. कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं और लव यू जिंदगी का आखिरी गाना सुनवाने जा रही हूँ। ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 6:15 पर अंदाजे बयां में फिर से मुलाकात होगी। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। वक्त हो चुका है 6:15 और ये वक्त है अंदाजे बयां का, एक ऐसा सफर जहां शब्द सिर्फ कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जहां हर शेर दिल के किसी कोने को छू जाता है। गजल सिर्फ संगीत नहीं होती, एहसासों की वो भाषा है जो कभी मोहब्बत बनकर सामने आती है तो कभी खामोशी में छुपे दर्द को आवाज देती है। इस महफिल में आज हम सुनेंगे कुछ ऐसी ही गजलें जो इश्क, यादों और तन्हाइयों के दरमियान कहीं बसती हैं। आप है मेरे यानी कि लक्ष्मी के साथ। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाउस लिस्टिंग आणि हाउसिंग सेन्सर्स म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: छः बजकर 30 मिनट होने का है और आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां. गज़लों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कभी सीधे दिल की बात नहीं करती, बल्कि इशारों में, अल्फाज की नरमी में सब कुछ कह जाती है. कभी एक अधूरी मोहब्बत का जिक्र, तो कभी किसी के इंतज़ार की खामोशी. और हैरानी की बात यह है कि हर शेर, हर मिसरा हमें अपनी ही कहानी सा लगने लगता है. शायद इसीलिए गज़लें सुनते वक्त हम सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि अपने अंदर कहीं उन्हें जी भी रहे होते हैं. इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत गज़ल. कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक.

बस हमारी ये जो महफिल है, बस वो एक गजल और बची है, इसी के साथ सिमटती है आज की ये महफिल अंदाज़े बयां की। कुछ अल्फाज दिल में रह गए होंगे, कुछ एहसास साथ चल पड़े होंगे। गजलों का यही असर होता है, ये खत्म होकर भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर गूंजती रहती है। उम्मीद है आज की इस शाम ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया होगा और कुछ अनकहीं बातों को आवाज़ भी। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर हमारी मुलाकात फिर से होगी हम तुम कार्यक्रम में। और मुझे पता है आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपना फेवरेट गाना सुनने के लिए। ठीक है, तो ये आखिरी गजल बजा रही हूँ। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: Musically Yours, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM Rainbow चैनल और अब वक्त हो गया है आपके अपने सेगमेंट हम तुम का, जहां बातें भी आपकी और गाने भी आपके। इस घंटे में माइक तो हमारे पास है लेकिन कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में। आप बताएंगे आपका मूड क्या है, आपकी पसंद क्या है और हम बजाएंगे आपके पसंदीदा गाने। वेल, तो देर किस बात की, भेजिए अपनी रिक्वेस्ट और इस शाम को बनाइए और भी खास। 8657661071 पर अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। और ये जो हमें मैंने नंबर भी नहीं दिया, उससे पहले हमारे जो रोज़ के लिसनर हैं उनकी रिक्वेस्ट भी आ चुकी है, तो मैं बजा रही हूँ अजय सखारे इंदौर से, उनको सुनना है नमस्ते लंदन का गाना। और विजेंद्र घटोल जी, उनको सुनना है जहर फिल्म का ये गाना। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

हम तुम यानी कि ये आप ही का कार्यक्रम है, आप ही के रिक्वेस्ट पे ये कार्यक्रम में गाने बज रहे हैं। दोस्तों अगले दो गाने जो सुनवाने जा रही हूँ, दीपा पालकर हम दिल दे चुके सनम से और हितेंद्र दास असम से कुंडली गांव से मुझसे शादी करोगी फिल्म का गाना सुनना चाह रहे हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप, गाना और फिल्म का नाम भेज रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि अपना नाम और कहाँ से भेज रहे हैं वो भी बताइए, क्योंकि गाने की रिक्वेस्ट आ गई।

उनका नाम आ गया और मुझे पता नहीं मैं कौन है जिनको ये गाना सुनवा रही हूँ। तो आप अपना नाम और कहाँ से भेज रहे हैं वो जरूर लिखिएगा। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

7:36 हो चुके हैं हम तुम में आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइशी गाने, और अगली फरमाइश मैं सुनाने जा रही हूँ हीरामणि वर्मा छत्तीसगढ़ से, सुनना चाह रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये गाना, और पंकज मोहर और फिरोज सिंगनपोरिया सुनना चाह रहे हैं फना फिल्म से ये गाना चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी। आ रहे हैं ये दो गाने बैक टू बैक। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: हम तुम में। बस मेरे पास दो गाने बजाने का वक्त है दोस्तों, प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, वक्त फिर मिलेगा और फिर आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। पर फिलहाल मैं सचिन बाजीराव जो सुनना चाह रहे हैं OMG फिल्म से मेरे निशा, उनको वो गाना सुनवा रही हूँ। और उसके बाद मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से और दत्तात्रेय आड़त वेलपुर से, उन्होंने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। और दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, ये आखिरी दो गाने मैं फरमाइश पूरी कर रही हूँ, पर मैं वादा करती हूँ फिर से आऊँगी, फिर से लौटेंगे आपकी फरमाइशी गाने पूरे करने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, दिल से दिल तक।
1: मुंबई सा काना कोपरा कई का दास्तान लपलेल्या भरलेल्या अगदी ठास ठासून भरलेल्या आहे। आपल्याला मुंबईची गोष्ट खरंच माहिती आहे का?

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है।

0: और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: जनादेश 2026।
7: असम, केरलम, तमिलनाडु

0: पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
0: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
2: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्सी आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.ai.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And now the news in detail. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in four states. West

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खुशामदी नाज़रीन हज़रात, आप सुन रहे हैं बज़्म में रंगे महफिल अपने दिल की आवाज़ सभी अनकवी के साथ। जी हाँ जनाब, ज़रा गर्दन झुकाकर देखेंगे तो इस नाचीज़ की सूरत को अपने दिल के किसी कोने में महफूज पाएंगे। दिल की गहराई के साथ आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ मैं, आपकी हमराज, आपकी दोस्त सभी अनकवी, बज़्म में रंगे महफिल के एक और खूबसूरत शाहकार में। हमेशा की तरह मौसीकी की इस खूबसूरत रात में आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ और मैं लाई हूँ हमेशा की तरह खूबसूरत हिंदी फिल्मी सिनेमा में इस्तेमाल की गई खूबसूरत गजलें, गीत और शाहकार। तो ये सिलसिला आज भी इसी तरह जारी रहेगा आपके साथ। आपको नहीं जाना है मेरे बगैर कहीं भी, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको सुनना है हमारा ये खास मौसीकी का प्रोग्राम जिसका नाम है बज़्म में रंगे महफिल। अपने नूर की और खूबसूरत बातों की वजह से इस प्रोग्राम में आप मौजूद तो हैं, ये मुझे बता रहे हैं आपके मैसेजेस जो कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर धीरे धीरे जगमगाने लगे हैं। लेकिन ये जो साथ है आपको निभाना है पूरा एक घंटा, बने रहना है मेरे साथ इसी तरह, क्योंकि आज एक बार फिर से बहुत खूबसूरत चुनकर आपके लिए लेकर आई हूँ मैं खूबसूरत तराने। तो ये जो सिलसिला है इसी तरह बने रहना चाहिए मेरे साथ। शायरी और खूबसूरत बातों का दौर रहेगा यूँ ही जारी। चलिए, फ़िलहाल आ चुकी है ये खूबसूरत शाहकार की बारी।

जी हाँ हुजूर, मेरे पास भी सिर्फ और सिर्फ आप हैं और किसी की गुंजाइश भी नहीं है और किसी का साथ चाहिए भी नहीं है, क्योंकि जब आपका साथ मैसर है तो फिर किसी और के साथ की ख्वाहिश खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। और ख्वाहिशें तो क्या हैं जनाब, ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। एक ख्वाहिश इंसान की पूरी होती है तो दूसरी ही उस वक्त नए तरीके से अपना सर उठाने लगती है। लेकिन ख्वाहिशों को कम करना या ख्वाहिशों को अपने में समेट लेना, यही एक इंसान की पहचान है। ख्वाहिशें ज़रूर करें और ख्वाहिशों को करना कभी छोड़ें भी नहीं, यही तो ज़िंदगी जीने की राह दिखाती हैं। लेकिन अगर ख्वाहिशें आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की बदमजगी पैदा करती हैं या रुकावट पैदा करती हैं तो वही ख्वाहिशों को समेट लेना चाहिए। और अगर कोई परवाह करे या कोई ध्यान रखे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमेशा की तरह सौरभ अनेजा गाज़ियाबाद से जुड़ चुके हैं मेरे साथ और बे इंतहा परवाह के साथ जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि दोस्त मुझे लगता है कि आज आपकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है सौरभ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मिजाज इंसान का उसकी आवाज़ से पता चल जाता है या किस तरह से क्या दिल में तासुरात उठते हैं ये भी आवाज़ से पहचान जाते हैं। एक अच्छे दोस्त की पहचान है कि आपने पहचाना। हाँ, थोड़ी बहुत नासाज तो सभी की तबीयत लगी रहती है, तो मौसम का भी तकाजा है, और आपने पहचाना ये जानकर खुशी हुई। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये जानकर भी खुशी है, और बज़्म रंगी महफिल का दौर चल रहा है, लगातार बातों का दौर चल रहा है, तो ये जो दौर है ये इसी तरह चलता रहेगा। और फिलहाल एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र करना चाहती हूँ कि मेरी उल्फत को दौलत की नज़र से ना देख फराज, मेरी उल्फत को दौलत की नज़र से ना देख फराज, वफा परस्त अक्सर गरीब होते हैं।

जी हुजूर, इतनी कम ख्वाहिशात के साथ जब इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे और इतने कम में खुश हो जाए तो ऐसे इंसान को भला कौन भुला सकता है, ये तो हमेशा याद रहता है। अक्सर मोहब्बत में ऐसा होता है कि कुछ लोग मोहब्बत में दौलत को तरजीह देते हैं तो कुछ लोग एहसास और जज्बात को, पाकीज़ा मोहब्बत को और दौलत को मोहब्बत के दरमियाँ आने भी नहीं देना चाहिए। ऐसी मोहब्बत जो दौलत पर मयस्सर हो, मुझे लगता है कि उसकी जो उम्र है काफ़ी कम होती है। ऐसी उम्र और ऐसी मोहब्बत जल्दी ही लड़खड़ा जाती है और वो ता ज़िंदगी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। जब आपकी मोहब्बत या आपकी ज़िंदगी ख्वाहिशों पे मयस्सर होने लगे या सिर्फ आपका जो रिश्ता है या आपका जो मोहब्बत है वो सिर्फ लेन देन पर हो जाए तो ऐसी मोहब्बत कहाँ ही परवान चढ़ पाएगी दोस्तों। ऐसी मोहब्बत तो बस जल्दी ही लड़खड़ा जाएगी और आप बीच मझधार में डूब जाएंगे। खैर, खुदा ना खास्ता ऐसा हो आपके साथ।

और सच्चे रिश्तों के साथ, पाकीज़ा एहसास के साथ किसी भी रिश्ते की शुरुआत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और हमेशा कहती हूँ कि अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें तो खुदा भी आपके साथ रहता है और आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मेरी तो यही दुआ है। फिलहाल दुआओं के साथ नवाज रहे हैं कुछ लिसनर्स हमें। नमस्कार, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सॉन्ग्स भी अच्छे आप प्ले कर रही हैं, आवाज़ भी अच्छी है, थैंक यू सो मच। वीरू बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहाँ से जुड़े हैं ये आपने जिक्र नहीं किया। हेलो सिर्फ लिखा है आपने और सर गलत लिखा, मैम लिखते तो अच्छा लगता। मंटू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रंगे महफिल कभी कभी गालों पर कभी कभी मुस्कुरा लो, ये दौर है ये पल कभी लौट कर नहीं आते, आज है वो पल खुशी से सजा लो, जो खो गया है वो लौट कर नहीं आते। बहुत खूब जनाब, आपने अच्छी और ख़ूबसूरत जो बातें हैं हम तक पहुंचाई और हम भी आप तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ जनाब, एक और धड़कनों को छेड़ने वाला और ख़ूबसूरत रंग भरने वाला अगला शाहकार आपकी ज़िंदगी में क्या झंझनाहट पैदा करता है ये आपको पता चलेगा इस खूबसूरत तराने के बाद।

मुबतला इश्क में जब इंसान होता है तो धड़कन किसकी है ये कब पता चलता है। ऐसा लगता है कि आपका दिल उनके सीने में धड़क रहा है और उनका दिल आपके सीने में धड़क रहा है, यहाँ तक कि सांसों की पहचान भी होना मुश्किल हो जाती है। मोहब्बत में कोई भी दूरी, कोई भी रुकावट कोई इंसान नहीं बिल्कुल भी पसंद करता अपनी ज़िंदगी में, और हर कोई चाहता है कि जो रुकावटें हैं वो उनसे दूर रहें। जी हाँ, इश्क में किसी के लिए तलबगार रहना, इश्क में किसी के लिए तड़पना, ये भी इश्क की एक अलग अलामत है और इसमें भी अपना एक अलग मज़ा आता है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान चाहे कितना भी सख्त मिजाज क्यों ना हो लेकिन मोहब्बत के आगे वो मजबूर हो ही जाता है। फिलहाल तो मजबूर हम हैं आपकी मोहब्बत के आगे। जी हाँ, मोहब्बत जो अपने मैसेजेस के ज़रिए से आप हम तक पहुँचाते हैं और हम आपके मैसेजेस पढ़कर दिल का सुकून पाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं जयंत जी जो कि पटना से हमारे साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट कब आइएगा प्लीज़ बता के जाइएगा। जी हाँ, आपकी इत्तला के लिए फरमा दूँ जनाब कि अब नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह 5 तारीख के दिन, यानी मैसेज मसाला मिक्स में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और उसमें भी हम डायरेक्ट दिल से दिल तक में जुड़ेंगे। और दानिश हमारे साथ खतौली से जुड़ चुके हैं, हमेशा की तरह उनका खूबसूरत मैसेज हमारे पास आ चुका है। सभी हम मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको हमारा शो

ये गानों का या नगमे तराने जो भी आप नाम देना चाहें ये पसंद आ रहा है, इसके लिए बेहद शुक्रिया। मंटू शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद मसरूफ भी हैं, थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, यानी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर थोड़े कम मैसेजेस आ रहे हैं, यानी मुझे लग रहा है कि वो थोड़े मसरूफ हैं। हाँ, इंसान की मसरूफियात हो सकती है और मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत करम करते हैं, हमारे शो को एक नया रंग दे देते हैं, खूबसूरती बख्श देते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ आ रहे हैं या हैं तो इसके लिए ज़रा नवाजिश आपकी। और सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोग्राम में मज़ा आ रहा है, शुक्रिया जनाब। और चलिए, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। चलिए जनाब, जैसे कि बज़्म रंगे महफिल आप जानते हैं कि शेर व शायरी के नाम रहता है, तो एक और शेर आपकी नज़र करना चाहती हूँ। ये उन लोगों के लिए खुसूसन हो सकता है जो कि थोड़े सख्त मिजाज होते हैं और लेकिन मोहब्बत के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, और किसी को जब अपना मान लिया तो मान लिया, फिर सारी जो अना है उसको ताक पे रख कर कैसे मोहब्बत में ख़ुद को डुबोया जाता है। ये गौर फरमाइए कि किस कदर तुझको चाहा कभी गौर तो कर, कि किस कदर तुझको चाहा कभी गौर तो कर, इतना तो मैं खुद का तलबगार नहीं, वो तो तुम हो जिससे इतनी उल्फत है मुझे, वो तो तुम हो जिससे इतनी उल्फत है मुझे, वरना मैं वह खुद गर्ज हूँ जिसे खुद से भी प्यार नहीं। मोहब्बत में आजमाना किसे कहते हैं, आइए आपको बताते हैं।

जी हाँ हुजूर, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि खुद को आजमाने से बिल्कुल ना रोकिए, मुकद्दर को आजमाने से कतई ना रोकिए, कोशिश करते रहें। कब कहाँ आपकी जीत हो जाए, आपको फतेह हासिल हो जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नाउम्मीदी हमेशा अपनी ज़िंदगी से बाहर का रास्ता दिखाइए और अपने अंदर एक नई और ख़ूबसूरत पॉजिटिविटी को जगह दें और मुकद्दर को और ख़ुद को और दूसरे इंसान को ज़रूर आजमाएं। इसमें शायद कहीं ना कहीं आपको शुरुआती दौर पर थोड़े से मरहलों का सामना करना पड़े, लेकिन यकीनन एक दिन आप सारे मरहलों से बाहर आ जाते हैं। चलिए, हमारे साथ भी हमारे जो लिसनर्स हैं वो लगातार जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा था कि आज शायद मसरूफ लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी से दर्ज करा दिया है कि नहीं भाई सबीहा, हमारे लिए कोई मसरूफियात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, मंटू शर्मा जी का एक सवाल है, और क्योंकि इनकी फ़ोन की बैटरी लो होने वाली है, मुझसे गुजारिश की है कि प्लीज़ जल्दी से बता दें। तो पूछ रहे हैं जो ये मैसेज मसाला मिक्स है कब आता है, तो ये आता है हर रोज़ शाम 6 बजे। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, जिसमें मैं आने वाली हूँ। और अब हमारे साथ कौन जुड़े हैं? जी हाँ, कल हमने मैसेज किया था लेकिन शायद लेट हो गए। जी हाँ मैडम, आप थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैं पुष्पा हूँ और आप मुझे जानती हैं अहमदाबाद से। जी मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप विकास की मदर हैं और मुझे पता है कि आप मदर और जो आपके बेटे हैं विकास, वो रेगुलर सुनते हैं प्रोग्राम मेरा और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ थैंक यू सो मच कि आप मुझे हमेशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देती हैं और विकास भी हमेशा से प्रोग्राम को पसंद करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। विजय कुमार नामदेव दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी हम मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम और के लिए सॉन्ग चुन चुन कर ला रही हैं, शायरी और मोटिवेट कर रही है, दिल को छूने वाली बातें कर रही हैं, थोड़ी तसल्ली मिलती है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं मैम, थैंक यू सो मच, आप सदा खुश रहें, थैंक यू सो मच आपकी बेस्ट विशेस के लिए। और यही तो काम है हमारा कि आपकी ज़िंदगी में हम आपको कहीं ना कहीं आपके जो ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं उनसे दूर ला सकें। उमेर मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबीहा, हम आपके प्रोग्राम खामोशी से सुनने में मसरूफ है। अच्छा, और ये वक्त हमने आपके लिए नाम किया है, यानी मेरे नाम मुकर्रर किया है। अच्छा, मुझे लगा कि आप सब मसरूफ़ हैं इसलिए मैसेजेस थोड़े कम आ रहे थे। कभी कभी होता है ऐसा, इंसान की अपनी बहुत सारी ज़ाती मसरूफियात भी हो सकती हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। सबीहा जी नमस्कार, मैं विकास चौधरी भरतपुर से, प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हैं, सॉन्ग्स भी आप अच्छे प्ले कर रही हैं, ज़रा नवाजिश के लिए शुक्रिया जनाब। इसी तरह जुड़े रहिए मुझे और अपने आप को, बने रहिए बज़्म रंगे महफिल की रौनक, और इस खूबसूरत अगली गज़ल को आप सुनकर ज़रूर कहीं ना कहीं लुत्फ़अंदोज़ होंगे और खो जाएंगे उन मीठी और खूबसूरत यादों में जो कि आप सब ने एक वक्त पर

जी हाँ जनाब, बाज दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाती है जिसको देखने के बाद आप अपनी सोच बदल लेते हैं, या यूँ कहूँ कि जिससे मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में तमाम तर तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, मिजाज में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है और लगता है कि भाई हम क्या थे पहले और क्या से क्या हो गए। ये तब्दीली अच्छी हो सकती है और अच्छी ही होनी चाहिए, बुरी तब्दीली की तो खैर हम बात भी नहीं कर रहे। इंसान तो ऐसे ही मिलें, आप ऐसे ही इंसान से दोस्ती करें जिससे आपके अंदर अच्छी तब्दीलियाँ आएँ ताकि ज़िंदगी और बेहतरीन रंग निखारे। और अगर बुरी तब्दीली वाले इंसान से अगर हम खुदा ना खास्ता मिल लेंगे तो ऐसे में तो बहुत गलत हो जाएगा आपके लिए भी। जी हाँ, इसीलिए इंसान ऐसा चुने अपने लिए भी, ऐसे शख्स का चुनाव करें जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी शख्सियत में एक अच्छी खूबसूरत निखार लाने में आपकी मददगार हासिल हो सके। तो चलिए, कुछ और मैसेजेस हमारे पास पहुँचे हैं क्योंकि भाई अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका साथ देना और उनके मैसेज लेना भी बीच बीच में ज़रूरी सा है। हेलो सबीहा नकवी, गुड इवनिंग। उमेश हमारे साथ जुड़े हैं सऊदी अरबिया से, आप कैसी हैं? वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जॉइंट लेट टुडे ड्यू टू लेट अराइवल फ्रॉम ऑफिस, एनीवे गुड म्यूज़िकल प्रोग्राम। ज़र्रा नवाजिश, जनाब क्या आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है? सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी हमारे साथ शांति नगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। रिस्पेक्टेड सबीहा नकवी जी, हैप्पी एंड हेल्दी संडे, गुड इवनिंग एंड नाइट गुड। अच्छा, ओके, वी आर द लिसनिंग योर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड नाइट्स प्लेलिस्ट। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी बेहतरीन बेस्ट विशेस के लिए और आपकी हौसला अफजाई के लिए। इसी के साथ हमारा शुक्रिया अदा कर रही हैं यहाँ जो अभी हमारे साथ जुड़ी थी, पुष्पा जी। अच्छा हाँ, कितने बजे शुरू होता है ये प्रोग्राम? जी पुष्पा जी, ये तो रोज़ाना प्रोग्राम शुरू होता है 11:05 पर रात, और लेकिन अलग अलग जो आरजे दोस्त हैं वो उसको पेश करते हैं। आज मेरी बारी थी तो आज मैं आई हूँ, कल कोई और आरजे दोस्त आपके साथ ज़रूर रहेंगे तो उन्हें भी सुनना ना भूलें। और समझ आएगा हर किसी को सुनकर के हर किसी का लबो लहजा अलग होता है, हर किसी को प्रोग्राम पेश करने का तरीक़ा बहुत अच्छा रहता है और आप पर मैं असर करता है कि आपको कौन पसंद आ रहा है। फ़िलहाल चलिए एक बहुत खूबसूरत सा जो शेर है वो आपको नज़र करना चाहती हूँ, और ये कहीं ना कहीं मेरी बातों और मुझे जो खूबसूरत बातों को आप कहते हैं, गज़लों को कहते हैं, शेर व शायरी को कहते हैं, उस पर ही जुड़ा हुआ है कि मेरी गज़लों को इतनी शिद्दत से ना पढ़ा कीजिए जनाब, मेरी गज़लों को इतनी शिद्दत से ना पढ़ा कीजिए जनाब, कुछ याद रह गया तो भुला भी ना पाओगे।

जनाब, ऐसी दुआ तो वही कर सकता है जिसने शिद्दत से मोहब्बत की हो या कर रहा हो। जी हाँ, किसी और को अपने महबूब की ज़िंदगी में तसव्वुर करना अपने आप में एक बहुत तकलीफ देह बात है। और जो शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, शिद्दत से रिश्ते निभाते हैं, वो अपनी मोहब्बत में किसी की भी साझेदारी बर्दाश्त नहीं करते। और शायद सिर्फ एक मोहब्बत ही रिश्ता ऐसा है जिसमें किसी की भी साझेदारी या किसी का भी दखल अंदाजी इंसान को बर्दाश्त नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि उसकी मोहब्बत, उसका महबूब, उसका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उसका रहे। अक्सर लोग कहते हैं कि मोहब्बत को बांटना बहुत मुश्किल है, खासकर महबूब की मोहब्बत को बांटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी सारी मोहब्बतें तो और रिश्ते तो बट ही जाते हैं। जैसे कि माँ बाप के लिए औलाद की मोहब्बत, हर औलाद के लिए अपनी जो मोहब्बत है माँ बाप की वो एक सी ही रहती है। भाई बहनों में भी जो मोहब्बत है वो भी अपने अपनी अलग अलग भाई बहनों में अलग अलग तरह की मोहब्बत रहती है, यानी बढ़ती ज़रूर है। दोस्त भी एक नहीं होता, दोस्त भी आपके कई सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये शौहर बीवी कहें या पार्टनर्स की मोहब्बत कहें, ये मोहब्बत ऐसी होती है जिसमें साझेदारी कतई कोई बर्दाश्त नहीं करता, और अपने महबूब के लिए तो कतई नहीं। खैर, ये मोहब्बत की शिद्दत पर भी मयसर करता है कि किस शिद्दत से आपने किसी मोहब्बत को चाहा है। फिलहाल तो चाहत की अगर बात की है तो एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र करना चाहती हूँ कि दिल धड़कता है तो डर सा लगने लगता है, दिल धड़कता है तो डर सा लगने लगता है, कोई सुन ना ले मेरी धड़कनों में नाम उसका।

जी हाँ हुजूर, इसी ख्वाहिशात के साथ बस आपसे अब लेनी है इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर से होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आपको वादा निभाना है और इसी तरह हमारे साथ बने रहना है, लेकिन आपसे कहूँगी वही एक ख़ास बात कि अपना रखिएगा एकदम खासम खास ख्याल, क्योंकि आप ही किसी के लिए बेहद ख़ास। खूबसूरत रात के इस ढलते हुए पहर में अपनी इस मेज़बान दोस्त सबिया नकवी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात करेंगे आपसे। और फिलहाल अगर इस प्रोग्राम के मुतालिक आपकी कोई राय है तो आप दे सकते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम बिंदास बोल में, जी हाँ, जिसका वक्त आप मुझसे ज़्यादा खूबसूरती से जानते हैं। तो इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय, अपना फीडबैक देना ना भूलें। जाते जाते ये आखिरी शाहकार आप सबके हवाले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्म निरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सीएपीएफ और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुचारू और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया के लिए मतगणना केंद्र के अंदर ड्रोन, मोबाइल फोन और ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय

ये इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसकी संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गुजरात टाइटंस की ओर से जैसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जीना तो शिद्दत है, जीना शिद्दत के साथ ही जीना चाहिए और ज़रूर जीना चाहिए। ऊपर वाले ने जब ये ज़िंदगी हमें नवाजी है और कुछ सोच कर ही नवाजी है, तो क्यों भाई ना जीने की बात करें। जिए और खुल कर जिए, हंस कर जिए, खुश होकर जिए। ज़िंदगी में चुनौतियाँ तो आती ही हैं, हम में से बहुत कम मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे लोग जिन्होंने चैलेंजेस फेस नहीं किए या चुनौतियाँ नहीं

0: देखिए, हर दिन हर मिनट में कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आता है, तो उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि वो नया पॉजिटिव हो, खुशनुमा हो। लेकिन अगर कहीं कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो हमें अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ उससे निपटने की पूरी चाक चौबंद तैयारी करनी चाहिए, बल्कि तैयारी रखनी चाहिए, तभी आप खुश भी रह पाएंगे। और खुश रहना जिंदगी का दूसरा नाम है। खुशहाल जिंदगी खुदा तक पहुंचने का, ऊपर वाले तक पहुंचने का, उससे बात करने का एक आसान जरिया माना गया है। आप ऐसा कर लेते हैं तो आप बहुत लोगों के लिए, खुद अपने लिए समेत काफ़ी लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं, और मिसाल बनने की कोशिश करते रहने चाहिए। ये पहला संदेश मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से इस प्रोग्राम में, जो करवट बदलते ही, कैलेंडर बदलते ही अभी अभी कुछ मिनट पहले दाखिल हुआ, और इसका नाम है जीरो आवर शो। क्योंकि इधर तो 00 होते हैं और उधर बस न्यूमेरिक डिजिट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो अभी का 00 के बाद 13 लगा हुआ है, यानी 12:13 मध्य रात्रि के हुए हैं। दिन बदल चुका है कैलेंडर के हिसाब से, और प्रोग्राम सबसे पहला इस दिन का दाखिल हो चुका है जीरो आवर शो के बतौर। और मैं हूं आपका दोस्त रजत, इस वक्त आप सभी का तहे दिल स्वागत करते हुए, मैसेजेस पर स्वागत करते हुए, आपके रेडियो सेट्स पर स्वागत करते हुए। और अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है हमारी न्यूज ऑन एयर, तो उस ऐप पर भी आप सभी का स्वागत करते हुए, देश और दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से आए हमारे सामईन के लिए, हमारे श्रोता मित्रों के लिए आप सभी का तहे दिल स्वागत और शुभकामनाएं आने वाले दिन की। इस जीरो और शो को थोड़ा सा सबरंग बनाने की कोशिश करेंगे, हर एक के मूड में जाने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं। फिलहाल ये जो सवाल है, ये सबसे पहले मुझसे पूछा अफशा खानम जी ने, धामपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने मुझे वेलकम किया, मेरी तरफ से भी आपका वेलकम अफशा जी। इसके बाद, बल्कि इनसे पहले हमें मिले थे राजकुमार साहब, इन्होंने चौंकाते हुए लिखा कि गर्मी में सावन, हालांकि ये बात समझ गए हमारी। और उसके बाद इन्होंने कहा नमस्कार रजत जी, आप सभी का स्वागत। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं महेश कुमार जी, मुकिमपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आपका भी स्वागत। प्रेजेंटेशन तो सर आपकी इनायत है गुड रहने की, लेकिन आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमेशा आप सभी की जो मौजूदगी है वो दिलो दिमाग पर बहुत अच्छा सा, बहुत सकारात्मक सा प्रभाव डालती है। एक और हमारे मित्र बहुत दूर से ये पूछते हैं कैसे हैं, मुझे पूछना चाहिए धर्मेंद्र भाई कैसे हैं आप, इतने दूर हैं और बहुत कम आपका यहाँ घर वापस आना होता होगा, लेकिन आप इस तरह के संदेश भेज देते हैं, हमें याद कर लेते हैं, हमारे प्रोग्राम सुन लेते हैं, हमारा भी दिन बन जाता है। ये आगे लिखते हैं, लंबे वक्त के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा है सर, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है आप लोगों से मुलाकात के बाद। तो खैर, आप अपना ध्यान रखिए, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाइए, और कुछ दिल की बात हो हमारे बाकी श्रोताओं के लिए भी अगर कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कह दें। हम 102.6 पर जुड़े हैं आकाशवाणी रेनबो के नाम से, और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर तो हम हैं ही। इसके अलावा आप व्हाट्सएप हमें करना चाहते हैं, और नंबर अगर आपके पास किसी भी वजह से नहीं है तो मैं बता दूं, 9868107070 हमारा नंबर है। तो प्रोग्राम में एक बार पुनः अभिवादन आप सभी का, अपना ध्यान रखें और प्रोग्राम सुनते रहें।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इंफॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 से 5 तक।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 से 2 तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आरिफ रब्बानी साहब हापुड़ से हमारे साथ शामिल हुए। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े आज, अपना नाम नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन बातें बहुत सारी लिखी, अपने दिल की काफ़ी गहराइयों तक पहुंचकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे साझा की। इतना भरोसा आप करते हैं हमारे साथ, हम पर बनाए रखें इस भरोसे को।

आकाशवाणी रेनबो पर आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी बनी रहे और इसी तरह से आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मिलता रहे। सभी दोस्त जो मैसेजेस के जरिए शामिल हुए और हो ही रहे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। ये शो का आखिरी गाना, इसके बाद हेमा होंगी आपके साथ सुहानी रात में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रजत को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस

वृद्धि में शामिल सात देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटन्स ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटन्स की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ, प्रोग्राम चल रहा है सुहानी रात। यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के लिए के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक क्यूआर कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब

रात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गम और खुशी जीवन की दो हसीन दास्तान है। एक मुहाने से शुरू होती है और दूसरे मुहाने तक पहुंचते पहुंचते बहुत तरह के एक्सपीरियंस, काफ़ी तरह के किस्म के तजुर्बे हमें दे जाते हैं। दूसरी जो दास्तान है खुशी की, उसका नहीं पता होता कि वो कब आती है, कब जाती है, कितने दिन वो टिकती है आपके साथ। लेकिन तजुर्बे ये भी देकर जाती है, पर जो पहली दास्तान है ना गम की, दुखों की, चुनौतियों की, वो हमें चुनौतियों का, दुखों का सामना करने का सबक देती है, उन चुनौतियों का संघर्ष के साथ, हौसले के साथ स्वागत करना और उनसे जूझना सिखाती है। तो जो ये दास्तानें हैं, इन दोनों को अपनी किताबों में बंद करके मत रखिए, बल्कि उस किताब के हर पन्ने को खोलकर इन्हें वहाँ जगह दीजिए, ताकि जब आपको इनमें से किसी भी हरफे की ज़रूरत पड़े ज़िंदगी में, आप चुपचाप से उठाकर अपने बाजू में रख सकें और उसे मन की, हृदय की ताकत बनाकर आगे चलें। हर जो लम्हा होता है वो जीवन में जीने का तो सुख देता ही है, लेकिन हमें जीवन में लड़ना, आगे चढ़ना और बढ़ना सिखाता है। तो ज़रूरी है कि खुशी या गम दोनों से ही सीखें। खुशी भी इस कदर हमें मदहोश ना कर दे अपने हैंगओवर में, अपनी खुमारी में, कि फिर हम नए सबक लेना भूल जाएं। जब उसके बाद जिसकी बारी आती है, यानी दुख की, गम की, हमें गम के दौरान, दुखों के दौरान, कष्ट और संकट के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हम खुशी के लम्हों को भी सिखा सकते हैं। तो क्यों ना एक तहरीर ऐसी लिखी जाए जो अपने आप में मिसाल बने। हमें किसी से सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम खुद इतने काबिल बन जाएं कि हमने सुख दुख के जो भंवरे थे, उनसे कुछ कुछ बूंदें अपने लिए बारी बारी से निकाल के रखे थी, तो हम किसी को कुछ ना कुछ देकर जा सकें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए प्रेरणा का सबक बने। कोशिश तो ऐसा व्यक्तित्व बनने की जानी चाहिए और ऐसा कुछ करने की चाहिए कोशिश कि वो आपसे भुलाए ना बने। देखिए, अब ये अंदाज था कार्यक्रम के टाइटल तक पहुंचने का, या फिर ये एक खास संदेश, आप जैसे इसे लेना चाहें। पॉजिटिविटी तो यही है कि हमें इसे सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए, एक सबक, एक लेसन की तरह लेके चलना चाहिए, जो जीवन में कहीं भी, किसी भी मुहाने पर, किसी भी सिरे पर हमारे काम आ सके। तो आप सभी को शुभकामनाएं आने वाले दिन की, इसी दिन की जो अब शुरू हो चुका है, और भुलाए ना बने का ये अंक, जो इस प्रोग्राम का, आज के दिन का पहला हिस्सा, पहला किस्सा बनने जा रहा है। आइए इसका शान करते हैं स्वागत, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम मौजूद हैं, आप भी हमें मिलिए 9868107070। इसके अलावा एक नंबर है हमारे पास, जहां आप व्हाट्सएप पर हमेशा की तरह हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। तो आपका तहे दिल स्वागत इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है भुलाए ना बने, मेरे यानी रजत के साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद रहने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उचला है प्रातः के 3:06 और ये समय है हमारे अगले प्रोग्राम यानी मिडनाइट मेलोडीज का। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम की बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का
1: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है, जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं लिया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और आंधी तथा तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज के साथ तेज वर्षा की आशंका जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप हमारे संग और हम आपके संग हो चले हैं, क्योंकि वक्त जो है वो है सुबह के 4:12 और सेकंड्स की रफ्तार भी 17 तक पहुंच गई है और शुरू हो चुका है वक्त के साथ साथ हमारा भी नियमित शो सारेगामा आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा जैसा कि हम बताते ही रहते हैं कि न्यूज़ ऑन एयर ऐप है हमारी, आप उस को डाउनलोड करके देश और दुनिया के हर हिस्से हर कोने से हमें सुन सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल सारे गामा में मैं हूं आपके साथ रजत और सब रंग गानों की ये गुलिस्तान लेकर मैं आपके साथ हूं और वक्त जो बहुत तेज़ी से अगले दिन को सुबह की तरफ भेजने में लगा है उसे अगले दिन में दिन के उजाले के साथ साथ कन्वर्ट करने में लगा है, हम भी उसका स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल तो तेज़ बारिश ने दिल्ली एनसीआर को इस वक्त ढका हुआ है और गर्मी का जो सितम था पिछले कुछ दिनों से लगता है कि उसमें कुछ कटौती ज़रूर देखने को मिलेगी और फिर से हम एक लुभावने मौसम का अंदाज देखने को पा सकते हैं। और बधाइयाँ आपको कि मौसम हम सब के लिए खुशियाँ ही लेकर आए, गर्मियाँ भी ज़रूरी हैं, बरसात भी ज़रूरी है, सर्दी भी ज़रूरी है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे लिए गम और खुशी तो कहीं ना कहीं दोनों ही ज़रूरी हैं। अभी बरसात तो बहुत ज़्यादा दिन की नहीं है लेकिन गर्मी का ही एक क्योंकि मौसम है और हर मौसम की अपनी उपयोगिता होती है, अपनी ज़रूरत होती है, इसीलिए जीवन के साथ जुड़े हमारे जो मौसम हैं चाहे वो हमारे स्वभाव के साथ जुड़े हों या वो हमारे आसपास की दैनिक रूपरेखाओं से जुड़े हों, हमें उनका लुत्फ उठाना चाहिए और कुछ ना कुछ जीवन से समय से सीखना ही चाहिए। आपके साथ सारे गामों में मैं रजत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सभी का स्वागत।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे।

गंगा भाड़ी अर्थ चंद्र माथी शुभ्र गंगा लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म भाड़ी अर्थ चंद्र माथी शुभ्र गंगा लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा।